चला कि अब जो बंदों की तारीफ आएगी, मुझे और आपको साथ में मिलकर अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं इन बंदों में हूं। मैं मजलिस में तो आ गया हूं, शामिल हो चुका हूं, लेकिन क्या जिसको खुदा अपना बंदा कहता है उसके अंदर मैं शामिल हूं? अगर नहीं हूं तो आज से। इसलिए इस बात को तमहीदी गुफ्तगू मैंने आज इख्तियार किया है। इन बातों को कई साल जहां भी जाता हूं तकरीबन इन्हीं बातों से बातों को शुरू करता हूं, ताकि बाद में आने वाले 9, 10, 11, 12, 15 दिन जो है वो जाया ना जाए। ये पहले दिन से आगाह किया जाए कौम को कि देखो भाई, अपने आप को अगर तुम अल्लाह के बंदे ठहराते हो, पहले देखो तो सही अल्लाह के बंदे हो या नहीं। इंशाल्लाह होंगे। लेकिन आइए तारीफ की तरफ। 18वीं आयत शुरू हुई का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीन यस्तमिउन अल-क़ौल फयत्तबिउन अहसना। ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो। कौन है मेरे बंदे? जो बातों को गौर से सुनते हैं। सुनते हैं नहीं, क्या गौर से सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं। अरबी जबान में दो लफ्ज है, आपकी हमारी इंग्लिश में भी दो लफ्ज है। अरबी में यस्मा कहते हैं सुनने को, और यस्तमा कहते हो गौर से सुनने को। इंग्लिश में भी दो लफ्ज है, पता है बच्चा आपको? बोलो। और ठीक, एक होता है हियरिंग और एक लिसनिंग, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपको पता चला कि जब मैंने आपके सामने कहा खुदाया तेरी बारगाह में हम तमाम की गुनाहों को तू कबूल फरमा, आप लोगों ने इलाह आमीन कह दिया। नतीजा ये निकला कि आप सुनते हो लेकिन गौर से नहीं सुनते। अब फैसला आपके हाथ में है कि मैं क्या खुदा का बंदा हूं? क्योंकि खुदा का बंदा, खुदा के बंदे की तारीफ वो है कि जो गौर से सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं। उर्दू में ध्यान से सुनते बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमारी गुजराती का है, बोल सकते हैं ना। चलिए एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फकत गौर से नहीं सुनते, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه। गौर से सुनने के बाद जो भी गौर से सुना है उसमें जो अपने लिए अच्छा खुद साबित करता है उसके पीछे पीछे वो चलता है। فيتبعون احسنه, ये कौन लोग हैं जो गौर से सुनने वाले हैं? हमने बताया ना, खुदा ने बताया कि ये कौन है, कौन है हाजी? मैं उर्दू में बोल रहा हूं भाई, कोई चाइनीज में नहीं। ये कौन है, ये गौर से सुनने वाले कौन है? शाबाश, अल्लाह के बंदे हैं। क्या फकत अल्लाह के बंदे हैं? इन मजलिसों का मकसद क्या है? खुदा ने उसके बाद उसी आयत में कहा उलाइकल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं। कौन लोग? जो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे कौन है? जो गौर से सुनते हैं। जो गौर से सुनते हैं वो सुनने के बाद क्या करते हैं? अमल करते हैं। उसके पीछे जो अच्छी बात उनको सुनाई में देती है उसके पीछे वो नक्शे कदम उसके चलाते हैं। उलाइकल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिनको खुदा ने हिदायत कर ली। वा उलाइका हुम उलुल अलबाब, और ये वो लोग हैं कि जो समझदार लोग हैं, कि जो अक्ल रखने वाले लोग हैं। आपने देखा कौम के अंदर अगर तरक्की नहीं हो रही तो ये जो हथियार या वसीला कहो कि खुदा ने कहा कि हिदायत अगर लेनी है तो गौर से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, सुनना काफी नहीं होता। और ये बात आज की नहीं, ये बात आज की नहीं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी यही होता था। तो मेरे जैसा अदना सा जाकिर शेख मोईज, इतना पतला सा, मेरे साथ अगर ऐसा होता हो तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? ये पहले जमाने में हुआ करता था, खुद नबी करीम के साथ हुआ है, उसकी गवाही परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में पेश की है। आज से 2 साल पहले बांद्रा के अंदर 2 तारीख की मजलिस, यही बातें हमने बयान की थी, और लोग ताके टाइम पर आए इसलिए मुझे कहा गया है कि लोगों को आगाह कर दूं कि इंशा

और नबी से पीठों को ना मोड़ो जबकि तुम उनको सुन रहे हो, और उन जैसे मत बनो, और उन जैसे मत बनो। वला तकूनु कल्लज़ीन क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। उन कोई बात नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अली मुहम्मद। और उन जैसे मत बनो कि जो लोग कह रहे हमने सुन लिया, खुदा ने कहा वो सुन ही नहीं रहे। वला तकूनु कल्लज़ीन क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। उन जैसे मत बनो कि जो कह रहे कि हम सुनते हैं, हमने सुन लिया, हालांकि खुदा कह रहे वो लोग नहीं सुन रहे। मतलब पहला, वो मान नहीं रहे, मतलब दूसरा, वो गौर से नहीं सुनते। अब जो आयत आती है उस पे ऐसे मुझे डर है कि मजलिस के बाद आप मुझे मारोगे, लेकिन मैं कहता हूं पहले जाके नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जुर्रत है तो नबी को मारना, और नबी के बाद खुदा को जाके मारिएगा। ये अकवाल खुदावंद करीम के है, कुरान मजीद की आयत है, ये हमें समझाने के लिए है कि ऐ खुदा के बंदे, तू मेरा बंदा बन सकता है। याद रखना, मैंने तुझे अक्ल दी है, मैंने तुझे अक्ल दी है, और जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते वो कौन लोग होते हैं। इसलिए इसके बाद वाली आयत 22वीं आयत चैप्टर 8 वर्स नंबर 22, वहां खुदा ने क्या कहा, इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना शर्रद्दवाबे इंदल्लाहि अस्सुम अल्बुक्म अल्लज़ीना ला यअक्लून। बदतरीन खुदा की मखलूक वो है कि जो गूंगे हैं, बहरे हैं, लेकिन अपनी अक्लों को इस्तेमाल नहीं करते। यानी पता चला ऐ मुसलमान, अगर तुझे हिदायत लेनी है तो गौर से सुनने की आदत डालना पड़ेगी, वरना तेरे अंदर और जानवर जिसके पास अक्ल नहीं कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जानवर सुनने के लिए तैयार नहीं होता। छोटी सी मिसाल लेते हैं, ये हमारा एरिया है, क्या इसका नाम डोंगरी, कौन या नीचे ही रहता है, बिल्कुल बाजू में, एक दो कदम 5-10 घर बाजू में कोई रहता है, मिनाज भाई रहते हैं, करीब है ना। अच्छा, यहाँ करीब में कुत्ते हैं, कुत्ते बहुत है ना, तो मैं तो दूर से आया हूँ, वो मुझे तो जानता नहीं, अजनबी हूँ उनके लिए, साल में कई बार एक बार आता हूँ। आप तो हर रोज उसी रास्ते गलियों से गुजरते होंगे जहाँ ये कुत्ते घूमते भौंकते हैं। मैंने अगर जाके किसी एक कुत्ते को कहा, कुत्ते मियाँ भौंकना छोड़ दो, हुसैन की नाम की मजलिस चल रही है, हाँ भौंकना छोड़ दो, यहाँ पर खलल होती है, मजलिस डिस्टर्ब होती है, मानेगा नहीं मानेगा, क्यों, अजनबी हो, लेकिन ये मिनहाज का तो माने ना, उनको तो जाना, इनका तो जाना पहचाना है, वो इनको जानता है, ये उनको जानता है, आपस में मिलजुल मुलाकात हर रोज होती है। अब इतनी उनसत है दोनों में, तो मैंने कहा मीरा कुत्ते को कहो भौंके मत, मानेगा सुनेगा नहीं सुनेगा, क्यों, जानवर है, अक्ल नहीं उसके पास। इसलिए खुदा ने कहा ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अक्ल दी है, और जिसके पास अक्ल होती है वो हिदायत ले सकता है। इसलिए पहली आयत में क्या आया था, उलाइकल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह व उलाइकहुम उलुल अलबाब। ये वो लोग हैं, कौन लोग, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो गौर से सुनते हैं, सुनने के बाद जो सबसे बेहतरीन बातें हैं उनकी इत्तबा करते हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी हिदायत खुदा ने कर डाली है, और ये वो लोग हैं कि जो समझदार अकलमंद लोग हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सीधा लगाइए, इसको सीधा रखिए ताकि मेरे गले पे ठंड ना पड़े, वरना अशरा जाएगा पानी में, आवाज बैठ जाएगी। एक सलात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर,

0: سيده سيده احسنت شباش صلوا على محمد وعلى محمد
1: الله
0: محمد صلي
1: على محمد
0: تو زاني محترم هدايه पाने के लिए याद रहे हमारा मौजू होगा सक्सेस हमारा मौजू होगा कामयाबी लेकिन आज तमहीदी गुफ्तगू है कल से इंशाल्लाह जब आओगे खुदा सबको इंशाल्लाह तौफीक दे लेकिन एक हथियार के साथ आना है क्या बोलिए सुनने का नहीं गौर से सुनने का है एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं होता गौर से नहीं सुनता उसके लिए खुदा बंदे करीम ने क्या कहा ये बदतरीन मेरी मखलूक है जो उसकी नजर में गूंगे है बहरे और आयतें आएगी शर्त इतनी है मिनहज ये था ना नाम मारिएगा मत मदिम मुझे मजलिस के बाद क्योंकि मैं यहां आपकी तारीफ करने के लिए नहीं आया हूं मैं भी हिदायत चाहता हूं और पूरे कौम की हिदायत चाहता हूं और हिदायत का पहला हथियार बहुत से हथियार पहला हथियार अगर कोई है तो वो हिदायत को गौर से सुनने का है देखिए हम अली वाले हैं मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहि सलाम मौला का हुक्म है नहजुल बलागा अब अली के मानने वाले क्या अली का कहा नहीं मानेंगे बेशक मानेंगे ये भी वही वाला है ये कौम के अंदर ये आपने बेशक सबको साथ में मिलकर कहा मैं आपको बता दूं कौम को क्योंकि उर्दू में मजलिस पढ़ रहा हूं वरना गुजराती वाले लोग हैं हमारे मडगस्कर वाले यहां है चलो गुजराती में भी थोड़ा डाल दूंगा इस बीमारी को मैंने नाम दिया है मैंने शेख मुईज ने उर्दू में कहा जाएगा उस बीमारी का नाम है कोकी बात सुनिए कभी ये कोकी की बीमारी किसी को है या आप तो उर्दू वाले हैं नहीं है ये गुजराती वाले हैं इनको पूछ लेता हूं नैनी बीमारी से तुमने कहीं नहीं न कोकी वाले उर्दू वाले कहते कि हमको ये बीमारी नहीं ये गुजराती है इनके यहाँ बीमारी का नाम है नैनी न नैनी वाले कहते हैं मतलब गुजराती वाले कहते हैं कि हमको ये बीमारी नहीं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ सबको कोकी की बीमारी है और सबको नैनी की बीमारी है कौन सी है कोकी की बीमारी अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की नहीं मानते नबी को मानते हैं नबी की नहीं मानते इमाम अलैहिस्सलाम को मानते हैं उनकी बातों को नहीं मानते यानी को तो है की नहीं अल्लाह को मानते हैं गुजराती बा अल्लाह ने मानिए थे अल्लाह ने बात नहीं मानवी रसूल ने मानिए थे रसूल ने बात नहीं मानवी इमामों ने मानिए थे इमामों ने बात नहीं मानवी को की अली ने कहा अव्वद उज़ुन का अला हुस्न इस्तिमा हुक्म है मौला का और मैंने कहा बीमारी है इमाम अली को मानते हैं लेकिन इनकी बातों को नहीं मानना ये एक बीमारी है आपने कहा अपने कान को अव्वद अपने कान की आदत डाल अव्वद उज़ुन का अला हुस्न इस्तिमा अपने कान की तरबियत कर अपने कान की आदत डाल अपने कान को सिखा बेहतरीन तरीके से गौर से सुनने की आदत अपने कान की डाल मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि जो मुझे गौर से सुनने से रोकती है गौर से सुनने से रोकती है वरना खुदा ने कान दिया है इंसान बाकमाल इंसान है वो गौर से सुनना चाहे तो सुन सकता है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो चीजों रुकावट बन जाती है हाइल बन जाती है बीच में आ जाती है मैंने बहुत सोचा बहुत से असबाब हो सकते हैं कि अपने कान को गौर से सुनने की आदत डाल आज के जमाने में पहली बात क्या है पहली बात यह है ये खिलौना अब मैं मजलिस में आया हूं यहां चैटिंग भी चल रही है बातें भी चल रही है घर से मैसेज आ रहा है बीवी का रोटी वापसी में लाना दूध वापसी में लाना मत भूलिएगा वरना ये वरना ये वरना ये दोस्तों से चैटिंग फेसबुक व्हाट्सएप जो भी हो ये सब मजलिसों के अंदर होता है नतीजा क्या होता है बंदा

दिए हैं लेकिन सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, ये जानवर जैसे हैं, बल हुम अदल, बल्कि उनसे बदतर, उनसे ज्यादा गुमराह है। वो उलाइका हुम गाफिलून, ये गफलत में पड़े हुए लोग हैं। छोटी सी चीज गौर से न सुनने को। ये खुदा ने जितने आजा हमको दिए हैं किसके लिए दिए हैं, इसका इस्तेमाल क्या है? हम जो ये सब कर रहे हैं ये बहुत काम की चीज हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है? कोई बात नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शर्त यही है कि इस आदत को, इस वसीले को, इस हथियार को, गौर से सुनने को हम अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजली से होती है, मैं क्या क्या करूँ आपकी दिलाजारी नहीं करना चाहता, वरना दुनिया घूमता हूँ। आप थोड़ी एक बार मेरी जगह पे तो बैठिए। जब आपके सामने पहले से आखिर तक बंदा सोया होता है, क्या हमको अच्छा लगता है? क्या हमको ये नहीं लगता कि क्या मैं बस बकवास कर रहा हूँ और सामने वाला सोया है? ये सब सिफतें खुदा ने बयान की है। अगर तेरे पास अक्ल है, खुदा ने अगर तुझे आज़ा दिए है, तो ये फ़कत आज़ा इस्तेमाल के लिए नहीं, ये वो वसीले है कि जो खुदा की तरफ तुझे ले जाएगा। मेरी आपकी खिलकत अभी शुरू हुई, शुरू हुई। देखिए वहाँ बात क्या होती है। कुरान मजीद का एक सूरा है जो हमारे नाम का है, सूरह इंसान। बच्चा पता है कौन सा है? सूरह दहर उसका दूसरा नाम है। नंबर पता है? शबाश। चैप्टर 76, पहली दूसरी तीसरी आयत देखिए। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ 76:1-3 का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मذकूरा। क्या इंसान के ऊपर इनकी जिंदगी में कोई ऐसा दौर नहीं था जब उसका नामो निशान कुछ था ही नहीं? हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मذकूरा। उसके बाद इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहे फजअल्लाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को पैदा किया एक मिला हुआ नुतफे से, और हमने इंसान को जल्लाहु समीअन बसीरा, हमने इसी इंसान को सुनने वाला और देखने वाला पैदा किया। फिर तीसरी आयत क्या है? इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। खुदाया कान के बाद, आंख के बाद फौरन खुदा ने क्या बात की? हमने इसको रास्ते की हिदायत कर डाली है। ऐ खुदा के बंदे, मैंने अभी तो कान की बात ही नहीं की, क्योंकि हमारी जरूरत अभी कान है, आंख नहीं। इसलिए तमहीदी गुफ्तगू किस पे हो रही है? सुनने को ही नहीं, गौर से सुनने को, और इस उजू पे, कान पे, कि जब मैं मजलिसों में बैठूं तो कोशिश करूं। अभी ये 45 मिनट कितना पढ़ने का है? कितना पढ़ने का अभी नज़ भाई? और 15 बस। चले एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये गौर से सुनना है ना, इंशाअल्लाह हम सबको ये हमारी मेहनतों का सिला और अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शर्त है, शर्त बहुत बड़ी शर्त है। मैं समझता हूँ शायद आपने अभी तक कभी सुना ही नहीं होगा। बहुत सी बातें हैं, ये 15 मिनट गुजराती में के ने पापड़ ना भांगे, ने दूसरा हमारा वो क्या है बोलने का तरीका है, रिंगड़ा है ना पाके, लेकिन क्या करे वक्त में गुंजाइश नहीं। हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम।

हर इमाम से वारिद है, हर इमाम से। आपने कहा है लोग इदस्तम अन्नासु महासन कलामना, अगर लोग हमारी बातों की खूबसूरती को गौर से सुनेंगे, सुनेंगे नहीं गौर से सुनेंगे, इदस्तम अन्नासु महासन कलामना, हमारी बातों की खूबसूरती को अगर लोग गौर से सुनेंगे ना, लत्तबाऊ ना, वो खुद ब खुद

एक छोटी बच्ची है, बाबा को देखते ही कहते हैं, बाबा जान अब वापस सही सलामत आ गए, अभी कर्बला का आगाज नहीं हुआ। लेकिन इस छोटी बच्ची सुकैना सकीना को अपने बाप से इतनी मोहब्बत है कि वो थोड़े दूर के लिए कहीं निकलते हैं ना, तो घर की दहलीज पे इंतजार करती है कि कब मेरा बाबा वापस आ जाए। मैं कहूंगा बेटी सकीना थोड़ा इंतजार कीजिए, करबला आएगी, आशूर का दिन आएगा, रोजे आशूर आएगा, असरे आशूर के बाद यही छोटी बच्ची खैमे की दहलीज पे खड़ी होगी। अरे मेरा बाबा मक्तल में गया था, अब तक क्यों वापस नहीं आया। हाँ अजादारो, हुसैन घर के अंदर आ गए, लोगों को तैयारियां करने का हुक्म दे दिया, अब सफर की तैयारी है। हुसैन मदलूम नाना के मजार से रुखसत होने जा रहे हैं, वहां पर गए, अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज किया। लेकिन जो बात मेरी जहन में आती है वो ये है कि अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि एक मोड़ वो आया कि हुसैन मदलूम अपनी माँ की लहद पर जब निकले ना, तो ऐसे लगता था जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के आगोश में जाना चाहता है। अरे वहां से भी हुसैन रुखसत हुए, अपने भाई से लहद से भी रुखसत हो गए, जब घर पे आ गए और निकलने की तैयारी थी, सफों को चीरती हुई एक ज़ईफ़ा आई, कौन? उम्मे सलमा आई। अरे सफों को चीरती हुई आई और हुसैन के दामन को पकड़ा और कहा, बेटा कहाँ जाने का सफर का इरादा है? कहा, नानी जान क्यों ये पूछ रही हो? कहा, बेटा मैंने नाना से सुना है इराक का सफर मत करिएगा, मुझे नाना ने बयान किया है। अरे मेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा वहां शहीद होगा। अला लअनतुल्लाहि अल-क़ौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल-लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदान बिक़दाहि व तस्लीमन लिअम्रिही।

0: हुआ? इन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। ये लोग कहीं नहीं जाने वाले।
1: खत्म कर दो ये सब। ये कोई आराम की जगह है?

0: जनाब मेरी क्या गलती है, सब यहीं रुकने के लिए कह रहे हैं।
1: जितना जल्दी हो सके सब लोग निकलो यहाँ से।
0: दुल्हन लेकर जा रहे हैं, कोई बाजार थोड़े ही लगाया है।
2: आवाज तक नहीं निकली। अपनी बीवी का नहीं तो चाचा की बेटी का तो ख्याल कर सकते थे।
3: कोई रास्ता नहीं है, सब जाने का इंतजार कर रहे हैं।
1: ये रुकने के लिए महफूज जगह नहीं है, यहाँ रात बसर करना जरा भी मुनासिब नहीं है।
3: हाँ बस जा ही रहे हैं हम।
2: अगर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल ना होता तो अभी इसी वक्त सबको लेकर कूफे की तरफ चली जाती, फिर देखती कि तुम क्या करते।
3: अब छोड़ो ना ये सब, चलते हैं।
2: या वापस चले जाते हैं या फिर यहाँ रुक के अपने बाबा के कारवां का इंतजार करते हैं।
3: नाइला गैरों के सामने ज्यादा मत बोलो।
2: तुमसे ज्यादा गैर और कोई नहीं है यहाँ पर।
4: चलो सब लोग अपना सामान समेटो, निकलना है यहाँ से, चलो जल्दी।
1: सब लोग इस तरफ चलो।
0: सलार, सलार।

0: ओहद जरा बताइए, मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं मैंने, कैसी लग रही हूँ?
1: अल्लाह खैरुल हाफिजीन वहुवा अरहमुर राहिमीन चश्मे बदूर। कौन कह सकता है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है, तुम तो खुद दुल्हन लगती हो। शामी औरतें भी ताज्जुब करेंगी कि आखिर दुल्हन कौन है।
0: अगर मुझे कारवा के साथ जाने की इजाजत दे देते तो क्या हो जाता?
1: सब्र करो, चलेंगे। तुम्हें अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत है, तुम उसे शौहर के घर छोड़कर कैसे आती?
0: पहले उसका ससुराल कितना करीब था और अब वो हमसे कितनी दूर चली गई है। कहाँ कुफा और कहाँ शाम। अच्छा, यजीद से ही निकाह पढ़वाना जरूरी था क्या हमारी बेटी का?
1: ये कोई मामूली बात है कि मेरी बेटी का निकाह अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया ने पढ़ा है?
0: अगर वाकई यजीद को अमीर मानते हैं तो कम से कम एक मर्तबा तो उसकी दावत कबूल करके खिलाफत के जश्न में शरीक हो जाते।
1: आजकल यजीद का नाम लेना मुसीबत है। तुम सियासत को मर्दों के लिए छोड़ दो और अपने काम से काम रखो।
0: जी बिल्कुल।
1: माजिद,
2: नायला बानो आई है।

0: चरवाहे कहेंगे तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं है? जब सब वहां रुके थे तुम क्या कर रहे थे वहां?
1: हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ उसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है।
0: हद करते हो, इल्जाम लगाना कोई तुमसे सीखे, और ये तो तुम्हारे कबीले की आदत है ना, शर्म से डूब मरने के बजाय अकड़ के खड़े।
1: आखिर मैं क्यों शर्म से डूब कर मरने लगा? मैंने इन वहशियों से अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी जान बचाई है।
2: सुनो, मैंने एक कारवा तुम्हारे हवाले किया था, पर तुम एक आदमी के साथ वापस आए हो।
1: वो सिर्फ एक नहीं, आपकी बेटी है।
2: मेरे भतीजे का क्या? उसकी लाश वापस लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्या?
0: इन आलवियों को पैसा देके हमने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे जैसे बुजदिल पर यकीन क्यों कर लेते हैं।
1: पहली बार आपके कारवा पे लुटेरों ने हमला नहीं किया, हम हर बार उनसे लड़े हैं, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए था।
2: अगर पैसा नहीं चाहिए था तो उन्होंने हमला क्यों किया?
1: वो खून के प्यासे थे। कारवा में सब कुछ सही सलामत है सिवाय मर्दों के जिन्हें कत्ल कर दिया गया।
0: मैंने पहले ही दिन

0: था इन पे यकीन मत करो। आखिरकार देख लिया, अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये सब तुमने खुद किया हो।
1: सही कह रहे हो, मैं चोर और कातिल हूं। मैं बेवकूफ हूं ना जो एक बेमालो दौलत कारमा पर हमला करूंगा और भागने की बजाय अकेला तुम्हारी बहन को बचाकर वापस लाऊंगा।
2: तो फिर तुम ही मुझे बताओ हिलाल, दिन दहाड़े मेरे कारवां को खाको खून में मिला दिया और तुम्हें पता भी नहीं कि ये किसने किया?
1: दुश्मनों की कमी नहीं है।
0: कुछ तो पता होगा।
1: जहां तक मुझे लगता है ये एक इंतकाम है।
0: बकवास कर रहा है।
2: जनाजों को इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाने का इंतजाम करूं।

0: तरह इसे भी बाजार तक पहुंचा देना, ठीक है?
1: बस इतना सा? पहली मर्तबा तो 10 बोरियां थी और अब बस इतना सा सामान?
0: क्या करूं, खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी बहुत कम, और ये भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा हो पाया। पता है ना रास्ते में कितना खतरा है? इस मर्तबा तो सुना है कि शाम के रास्ते में रागिब बिन औसत के कारवां को भी लूट लिया गया है, सुना है ना तुमने?
1: किसने कहा ये?
0: कारवां के कासिद ने बताया, उसने अपनी आंखों से देखा। छोटे बड़े सबकी गर्दनें काट कर सहरा में फेंक दी गईं।
1: सच कह रहे हो?
0: मैंने तो जो सुना था वो तुम्हें बता दिया, हकीकत तो मुझे भी पता नहीं।
1: जहां तक मुझे पता है उस कारवां में तो एक मुहाफिज भी था।

0: मैंने अपने कानों से सुना है, रातों रात मदीने से निकल गए हैं।
1: अजीब उम्मत है मियां, अब तो खुदा ही हिफाजत करे, चलता हूँ।
2: किसी ने खबर की जांच पड़ताल की है कि बस ऐसे ही दावत दे रहे हो?
3: जनाबे हबीब ने खबर दी है, इससे ज्यादा क्या जांच पड़ताल होगी। आज इब्ने माविया के मुकाबले में इमाम की बैत ना करना मेरी समझ में तो कोई माकूल तरीका इकार नहीं है।
4: खुद से अंदाज लगा के इमाम की सियासत को नहीं समझा जा सकता। हो सकता है वापस जाके वो बैत कर ले।
3: रात की तारीखी में उनके पूरे खानदान को मदीने से निकाल दिया गया है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इमाम ने बैत नहीं की है।
5: उन्होंने इसलिए शहर छोड़ा ताकि खुदा के वली से जबरदस्ती बैत न ली जाए। जनाब
6: ऐसे में देखा जाए तो इनकी जान

0: को भी खतरा है।
1: इमाम को कूफे की दावत देने का मेरा बस यही मकसद है। आखिर ये शियाने अली का शहर है, यहाँ हजारों घर इमाम के हैं और सब लोग इन पर कुर्बान हैं।
0: माफी चाहता हूँ।
1: खुदा की कसम, जब तक औलादे पैगंबर के कदम इस खाक पर नहीं पड़ेंगे तब तक हम लोगों की आकिबत बेहतर नहीं होगी, समझे? एक हो जाओ अल्लाह के नाम के लिए, बिस्मिल्लाह करो।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: इस तरह आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने सुना है, यानी

0: लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सुनने में आया है कि रहने दे।
1: बताओ, जो भी कहना है कहो। रुको, बताओ क्या हुआ।
0: ऐसी खबर मिली है कि राघव की दुल्हन के कारवां को शाम के रास्ते में लूट लिया गया है। छोटे बड़े सब जितने थे सारे के सारे कत्ल हो गए।
2: तो उसी कारवां में था।
3: बात तो एक तरफ है, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि दामाद भी उससे ज्यादा उस्मानियों की खिदमत करने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाया। हम सभी को जलील करके रख दिया उसने।
4: खुदा अरहमुर रहीमीन बख्श देगा।
5: आमीन।
6: जरूर बख्शे
5: इंशाअल्लाह। फातिहा मा सलावत।
7: अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाहुम्मा सल्ले।
8: सामिया सुनो, फिक्र मत करो, उसके बाबा ने इस्लाम की बहुत खिदमत की है, वो बख्शवा देंगे।
3: फिलहाल तो इस खानदान पर एक अजीम मुसीबत आ पड़ी है, बाकी बातें बाद में होंगी।
1: सब बैठ जाएं। इस वक्त इमाम के लिए दावतनामा लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अहद के घर से एक खबर आई है। बासित, जाओ तुम हिलाल का पता लगाओ।
0: जी अच्छा।
1: अच्छी खबर लाना। जो कत्ल होना था हो गया, अब आप हैं और आपका जमीर है। अली के लाल के खिलाफ अम्बियों की जितनी चाहे बैत कर लें।
9: अगर कुछ देर तुम्हारी खबर ना मिलती तो खुदा की कसम मेरी तो जान ही निकल जाती।
10: मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से पहले मेरी मौत की खबर पहुंच जाएगी।
9: कुछ पता चला किसका काम था?
10: अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा।

0: अरे खानम, देखो जरा कौन आया है।
1: मामू जान।
2: सलाम मामू की जान।
1: कहाँ थे आप? परेशान कर दिया था।
2: परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ।
1: आपको क्या हुआ? ये फोन है।
2: नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा लग गया था। सलाम माँ।
3: सलाम।
2: कुछ नहीं।
4: आहिया, तंदूर लगाया या नहीं?
3: खुदा हाफिज, सलामत रही।
4: आओ आओ, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो नहीं हो रहा ना मेरी जान? तुम ठीक हो ना? तुम मेरे भाई की निशानी हो, मेरे पास मेरे भाई की अमानत। तुम मेरे पास मेरे भाई की निशानी हो, मेरे पास मेरे भाई की अमानत हो, मुझे जान से ज्यादा अजीज।
0: अरे तुम्हारी अमानत तो यहाँ पर है, बिल्कुल सही सलामत है। लोग दुकान पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, चलता हूँ।
3: खुदा हाफिज, सलामत रहे।
0: चलो बच्चे। खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
3: अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम जिम्मेदार होते हिलाल। हंसो मत अब, अल्लाह की कसम मेरी जान निकल गई थी। तुम तो शाम के सफर पर गए थे और यहाँ तुम्हारी मौत की खबर पहुँच गई थी। मैं तो डर गई थी,

0: वो बिला वजह नाराज नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान थी वो। जब से कारवां की खबर आई है इनकी निगाहें दरवाजे पर ही है।
1: इसका क्या मतलब है? मैं अकेला अलवी नहीं हूँ जो उस्मानियों के कारवां के साथ जाता हूँ।
0: तुम अब इन सारी बातों को भूल जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए हो। तुम वहां तो मजे में थे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी। हिलाल, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे?
1: बोलो।
0: बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हो, सदका दे दो।
1: ठीक है। परेशान क्यों हो रही हो? इतना गहरा जख्म नहीं है। खुदा का शुक्र है मैं अपने घोड़े जितना परेशान नहीं हूं।
0: जिस्म का जख्म तो बंद हो गया है, लेकिन मुंह बंद नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, जिसका इलाज इस वक्त तो मेरे पास भी नहीं है।
2: क्या बात है, दिखता नहीं बच्चा सो रहा है।
0: थक गया है, अब इतनी जल्दी तो वो नहीं उठेगा।

0: ये एक जवान की तरह सारे काम करेगा। चलो
1: चलो आ जाओ।
2: और खूब और खूब देखने दो। और क्या है? ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आखिर गई कहाँ वो?
0: आहा, जल्दी करो जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके इसे खरीद लो इसे जल्दी से जल्दी।
2: कमाई कम थी लेकिन बरकत तो थी ना। अगर मेरे जानवरों के पास रहकर उनकी हिफाजत करते तो मेरा उतना नुकसान नहीं होता जितना अब हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता?
1: मुआफी चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे।
0: यकीन मानिए, अगर सारी दुनिया भी घूम लेंगे तो ऐसी कनीज कहीं नहीं मिलेगी।
3: क्या बात है तवक्कुल के बेटे।
0: नहीं, तुम जरा भी फिक्र मत करो।
1: मुझे एक मोटी ताजी लजीज भेड़ चाहिए सबके लिए।
2: सबसे अच्छी वाली दिखाता हूँ तुझे।
4: जरा उसे घुमा के दिखाओ, पता भी तो चले कनीज कैसी है।
0: चल घूम के दिखा, चल घुट दिखा।
5: कबीसो, मैं तुम्हारी कनीज नहीं हूँ, समझ गए?
6: जनाब, गुलामों को पर्दा कौन करवाता है? जरा सर खोल के दिखाइए।
0: नहीं जनाब, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। लीजिए देखिए।
6: यही बात,
0: देखिए इसे खोल के देखिए, कितनी खूबसूरत है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखिए इसे, बहुत खूबसूरत है ना। बताइए किसे चाहिए, बोलिए।
7: मैंने खरीद ली है, ये लो कीमत।
8: मुबारक हो जनाब, मुबारक हो। वाह क्या बात है, तुम्हें तो अच्छी शनाख्त है।
7: मुसलमान हो?
5: नहीं।
7: क्या कोई रिश्तेदार है? किस शहर से हो?
5: विदान से हूँ।
7: घबराओ नहीं, मैं महफूज भेज दूंगा, आ जाए।
2: फिलहाल ये ठीक है, बेहतरीन है तुम्हारी नजर में।
7: बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने गुलाम आजाद कर दिया।
4: खुदा कबूल करे इब्ने हनीफ, खुदा तुम्हारे भाई और वालिद पर और तमाम शुदाए इस्लाम पर रहमत करे। ये सदका दिया था या गुनाहों का कफारा है? क्या तुम समझते हो कि गुलामों को आजाद करवा देने से तुम्हारी मालो दौलत पाक साफ हो जाएगी? इस तरह के कामों का कोई फायदा नहीं है।
0: शेख, तुम तो उस्मानियों के साथ काम नहीं करते हो ना? तुमने तो इस हुकूमत को कुछ नहीं बेचा, बस अपना ही पेट भर लिया, और जब दूसरों की बात आई तो उनका माल हराम हो गया। सही कहा ना मैंने?
2: बिला वजह क्यों तुम इन दोनों

0: लोगों के दरमियान पड़ रहे हो।
1: क्या करूं, मेरे दिल को बिला वजह और फजूल की बातें सुनने की आदत जो नहीं है।
2: फजूल की बातें तो तुम कर रहे हो, पहले अपने मुंह की निजासत को पाक करो, फिर मुझे वाजू नसीहत करना।
3: अच्छे आदमी के पास जा रही हो।
4: अच्छा, तो अब तुम हमारे फैसले करोगे। मेरा माल हलाल है या हराम, इसे मैं ही तय करूंगा, तुम नहीं।
2: तुम जरा होश में काम करो, इन लोगों के साथ रहकर तुम भी अंधे हो गए हो। बेहतर यही होगा कि इस बात को मत भूलो, रागिब के पूरे कारवां में से खुदा ने सिर्फ तुम पर रहम किया था। खुदा अली के शियाओं का हामी और नासिर है, याद रखना।
4: खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई, और हाँ, आपको मेरी सलामती के लिए दुआएं करने की कोई जरूरत नहीं। बोलने से पहले पूरी बात जान लिया करो। आ जाओ,
1: चलो जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो इब्ने हनीफ, बड़े अच्छे दिन गुजरेंगे। तो अब दूसरे की बारी। कोई है?
5: आप मुझे आजाद कर देंगे?
4: हाँ, ऐसा ही करो।
5: फिदान भेज देंगे मुझे?
4: जी हाँ।
6: इब्ने हनीफ, ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना?
4: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि तुम अपना ख्याल रखा करो और लोगों से खुद को बचा के रखा करो, लोगों की नजरें अच्छी नहीं है। ये लो, देखो तो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए।
4: फिरोजा, खुद लाई है?
6: खुद तो जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरी आंखें असल और नकल की पहचान कर लेती हैं। ये देखो, नैशापुर का फिरोजा है, बुरी नजर से बचाता है, सिर्फ 3 सिक्के का है।
4: ले लूंगा, लेकिन इस फिरोजे से मेरा कुछ नहीं होने वाला। दुआ करना मेरे लिए।
6: तुम जैसे जवान को मेरी दुआओं की क्या जरूरत है? इब्ने हनीफ, ये दो है, एक से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों ले जाओ।
4: दुआ करना।
6: खुदा हाफिज।
4: चलो, यहीं रुको।
7: ऐ लोगों, हमारे प्यारों के जनाजे आ गए हैं, जनाजे आ गए हैं।
8: जवान बेटी की लाश ने मेरे होश पाक

0: जाओ इसे यहाँ से।
1: जरासी का एहतराम करो, तुम्हारे इस तरह रोने पीटने से मरने वाला वापस नहीं आ जाएगा।
0: ऐसे में और भला मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं अपने शौहर की मौत का गम मनाऊं या फिर खुशी मनाऊं?

0: ये मर्द, ये बेगैरत इंसान, ये अमीन का चचाजाद हमारी पीठ में खंजर घूम रहा था और हम बेखबर थे।
1: बाहर जाओ, बाहर जाओ।
2: तुम किसकी बात कर रही हो मेरी बच्ची?
0: बहुत देर से समझ आई, कारवां चल पड़ा था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, वो तो मुझे दरबार में ले जाकर यजीद बिन माविया के हवाले करना चाहता था। मैंने उससे अपनी इज्जत की भीख मांगी, कितना गिड़गिड़ाई पर उसने मेरी एक ना सुनी।
3: तुम पागल हो गई हो मेरी बच्ची, होश खो बैठी हो अपना, ले जाओ इसे यहाँ से।
0: पागल तो मैं तब हो गई थी जब उस सहरा में नंगे पांव अपने शौहर की बेगैरती का शिकार हो गई थी।
2: ये क्या कह रही है?
0: मुझे तो लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो बेशर्मी से कह रहा था कि तुम आज से अमीरुल मोमिनीन यजीद की बीवी हो। मैं तो वही उसी वक्त बर्बाद हो गई थी।
3: नामुमकिन है, ये नामुमकिन है बाबा। हमारा चचाजाद भाई ऐसी गलती हरगिज नहीं कर सकता।
2: हाय, कितने अच्छे इंसान थे, ये क्या हो गया तुम्हारे शौहर के साथ? खुदा तुम्हारी खैर करे नायला।
0: इस बेगैरत इंसान की तरफदारी करना बंद करो।
3: चिल्लाओ मत नायला, चिल्लाओ मत। तुम कैसे किसी मरे हुए इंसान पर तोहमत लगा सकती हो?
0: मेरा यकीन नहीं करेंगे। बाबा मेरी तरफ देखिए, यकीन नहीं है आपको मुझ पे?
3: मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नहीं, तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो। बाकी बातें तशिए जनाजा के बाद।
0: तशिए जनाजा? कब से बेगैरतों और बेजमीर लोगों का तशिए जनाजा होने लगा? हाँ
3: या अल्लाह,
0: काश मैं वहीं मर जाती तो ये जिल्लत तो ना देखनी पड़ती। मेरा यकीन करें, अगर ये बेगैरत जिंदा होता तो इस वक्त में यजीद की कनीज होती और आप लोगों तक इस बात की खबर भी न पहुंचती।
3: तशिए जनाजे के बाद बात करेंगे।
0: काश इस अलवी सिपाही जितने ही बागैरत होते।
3: ज़बान संभाल के बात किया करो मुझसे।
4: ओहद साहब, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं होगा।
3: पूरे कूफे के सामने जलील हो गया, जल्दी करो, तशिए जनाजे का इंतजाम करो, तशिए जनाजे का इंतजाम करो।
5: लेकिन मैं कल सुबह तक इसके जनाजे की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कफन और दफन कल होगा। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज धीमी रखें, उसकी बेवा आपके रोने की आवाज नहीं सुन पाएगी।
3: घर का दरवाजा बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, घर के लोगों के अलावा कोई ना आ सके।
4: रोना धोना बंद करें, इस घर के लोग गमजदा हैं, अपने अपने घर जाओ।

0: मुझे इसके मरने का कोई गम नहीं है।
1: या अल्लाह,
2: खुश आमदीद इब्ने हनीफ। वैसे हम सब ने यहाँ पर आपकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं।
0: मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी कि आपके सामने शुक्रिया अदा करूं उस एहसान का जो आपने मुझ पर किया है। बस मैं ही जानती हूं कि आज मुझे जो सुकून मिल रहा है उसके पीछे कितनी सख्तियां थी, कितनी मुसीबतें झेली हैं मैंने।
1: अजीम मुसीबत है, तसलियत अर्ज है। मैंने आपकी जान की हिफाजत के लिए सदका दे दिया।
2: आपको लंबी उम्र दे,
1: सलामत रहे। आप पर जो भी मुसीबत पड़ी है उसका असल जिम्मेदार मैं हूं, शर्मिंदा हूं। ये फिरोजा बलाओं से बचाता है, हमेशा अपने पास रखिएगा।

0: औहद साहब,
1: क्या हुआ?
0: ये क्या सुन रही हूँ मैं? कुछ पता करवाया है आपने? ये हमारे और बनी उमैया के दरमियान की बात है।
1: पता नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी अफवाह लोगों तक पहुंचे। जितना हो सके खामोश रहो।
0: नहीं पहन रही है वो, बहुत कोशिश की है मैंने। तशिया जनाजा में तो आएगी नहीं, और मैं जानती हूँ कि वो सोग में भी ये नहीं पहनेगी।
2: बाबा से जरूरी बात करनी है।

0: Allahus-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. बात नहीं कर रहा है तो मैं जाता हूँ। दस मरतबा फातिहा पढ़ लिया, अब भेज चुप है।
1: मैं इस बेगैरत के बारे में अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था कि ये यजीद के पास जा रहा है। नाइला ने बिल्कुल सच कहा है।

इस बात पे आपसे माजरत कर लूं, अपोलॉजी, कि हर साल पहली मजलिस में दो तीन ऐसी बातें हैं जो मुझे रिपीट करना होती हैं, और हो सकता है कि इन्हीं दो तीन बातों के रिपीटेशन में आज की मजलिस का टाइम पूरा हो जाए, लेकिन ये इतने अहम कुछ मैसेजेस हैं जो पहली रात की मजलिस में बयान करना ज़रूरी होते हैं। अय्याम अज़ा, जैसा कि आप अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिसों में सुनते हैं, अरबईन या अरबईन के बाद की मजलिस में, कि एक मोमिन खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर रह सकता है, ज़िंदगी की हर ज़रूरत छोड़ सकता है, लेकिन अज़ा के बगैर नहीं रह सकता। और मैं अक्सर दलील के तौर पर, भाई ये खाली एक मेरा गैस या अंदाज़ा नहीं है, मैं दलील के तौर पर शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वह जुमला कोट करता हूँ कि जब जिंदान शाम से रिहाई मिल रही है, और हर एक को मालूम है कि वो शाम का कैद खाना, वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉपर खाने का पीने का इंतज़ाम नहीं था। रिवायत आपकी सुनी है और बार बार सुनी है कि शहज़ादी बैठ कर नमाज अदा करती, और जब आका सज्जाद पूछते हैं कि आपने तो शाम गरीबा भी नमाज बैठ के नहीं पढ़ी आज इस जिंदान शाम में, तो जवाब यही तो था ना कि आने वाली ग़िज़ा या पानी इतना कम है कि मैं अपना हिस्सा भी बच्चों को दे देती। और आज हालत यह है कि अली की यह शेर दिल बेटी नमाज पढ़ने की ताकत भी नहीं है कि खड़े होकर नमाज पढ़े, तो ये जिंदान शाम है। लेकिन जब इस शाम के कैद खाने से रिहाई मिली, और वो भी आपको मालूम है कि सारी कंडीशंस तो शहजादी ज़ैनब ने रखी थी, यजीद की कोई कंडीशन नहीं थी, वो तो हर कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा था। दुनिया का उसूल है कि हमेशा जीतने वाला कंडीशन रखता है, जो हार जाता है वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता। ज़ैनब कुबरा ने जो कंडीशन रखी, उसमें एक कंडीशन ये थी, क्या होना चाहिए थी, कंडीशन ये होना चाहिए थी कि इतने दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं प्यासे, इनके लिए प्रॉपर ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाए। ये कंडीशन नहीं रखी, कहा जब से मैं करबला से चली हूँ अपने भाई का मातम नहीं कर सकी हूँ, मुझे मातम के लिए एक जगह लेके दी जाए। बच्चों की भूख प्यास बर्दाश्त है, बच्चों की प्यास बर्दाश्त है, खुद अपनी इतनी कमज़ोरी बर्दाश्त है कि नमाज तक बैठ के पढ़ रही, लेकिन हुसैन के मातम से दूरी, हुसैन के मातम में कमी, ये बर्दाश्त नहीं। ये खाली ज़ैनब कुबरा का अकीदा नहीं है, यह हर मोमिन और मोमिना का क़यामत तक का अकीदा, कि हम हर आराम को, हर लग्जरी को, हर नेसेसिटी को, लग्जरी भी नहीं, खाना और पीना तो ज़रूरत है, इस सब को कम कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हुसैन की अज़ा में कभी कमी नहीं आना चाहिए। और ये वो अज़ा जो हज़रत आदम से लेके वाक़ियात आप सुनते हैं, पहली मजलिस में उमूमन उलमा बयान करते हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। करबला की ज़मीन से हर नबी का गुज़र हुआ, दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से हर नबी को गुज़रना पड़ा। क्योंकि मैं अभी अभी हज से वापस आ रहा हूँ, तो थोड़ा आपको वो जो हज से एक तोहफ़ा लोग लेके आते हैं फ्लू का, उसका असर भी आपको नज़र आएगा मेरी आवाज़ और अंदाज़ में, और फिर मेरी मजालिस में थोड़ा थोड़ा मौजू से हट के कभी कोई हज का जिक्र आ जाएगा, अभी अभी आया हूँ इसलिए। तो एक मीना की मस्जिद खैफ है, जिसके बारे में कहा जाता कि वहाँ 70,000 अंबिया ने नमाज़ें पढ़ी। खाने खुदा तो खैर है ही वो जगह जहाँ 1,24,000 अंबिया में से हर नबी ने आके इबादत की, लेकिन करबला वहाँ खसूसियत के साथ ही है। मक्के में हर नबी आया है लेकिन तवाफ़ करके गया या नमाज़ पढ़ के गया। मीना की मस्जिद खैफ में हर नबी आया है और नमाज पढ़ के गया, लेकिन करबला से हर नबी का गुजर हुआ है तो वहाँ पे नमाज नहीं हुई, वहाँ पे मातम हुआ है, हर नबी के बदन से खून जारी हुआ। चाहे वो हज़रत आदम हो जिनके पाँव को ठोकर लगी और खून जारी हुआ, चाहे वो हज़रत नूह हैं जिनकी कश्ती नजात, जनाब नूह की कश्ती नजात है हर प्रॉब्लम से, लेकिन जब वो करबला पे से गुजरी थी तो किस तरह से वो कश्ती डूबने के करीब हो गई थी। मैं वाकयात को बयान नहीं करना चाहता, एवरी ईयर आप उसको सुनते, किस तरह हज़रत इब्राहिम के घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से ज़मीन पे गिरे और पेशानी ज़ख्मी हुई, किस तरह से हज़रत इस्माइल के जानवरों ने चरते चरते

तरीके से एक अजादार के जिस्म की मिट्टी ने उनको वो आईसाइट वापस लौट आई कि 90 की एज में भी वो चांद की रोशनी में विदाउट एनी ग्लासेस बारीक से बारीक इबारत पढ़ लेते थे। बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है लेकिन बहुत मशहूर है। फिर आगा मोहसिन हकीम, ये मैं ज़रा ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो तकलीद के स्टेजेस हैं उसके आगे हवाले से बात कर रहा हूँ। आगा मोहसिन हकीम, वो भी वाकया शायद मैंने ही पहली दफ़ा मिंबर पे पढ़ा था लेकिन इसके बाद बहुत फेमस हो गया। और वो ये है कि जब किसी ने एतराज़ किया कि क्या चौथे इमाम के बारे में ये रिवायत समझ में आती कि वो करबला पे जब रोते थे तो पानी वाले आंसू नहीं बहाते थे, खून के आंसू उनकी आंख से निकलते थे, तो आगा हकीम ने कहा कि वहाँ की बात छोड़ो, यहाँ बैठो। आका अब्बास के हाल का मरसिया एक नोहा खान से शुरू करवाया, रोए और आंखों से बाकायदा खून टपक रहा। और फिर मरहूम आयतुल्लाह खुई, जिनकी तकलीद पे अब तक कुछ लोग बाकी हैं शरई मसले की वजह से, उनका भी बहुत मशहूर वाकया कि लेडीज़ की एक छोटी सी मजलिस उनके छोटे से घर में हुई जिसकी वजह से वो इश्तिहाद की जो स्टडी कर रहे थे कि कल मुश्तहदीन को जो लेसन देना, मर्जे भी रात को पहले स्टडी करता है इसके बाद फिर जाके दर्स देता, तो ज़रा उसमें डिस्टर्बेंस हुआ और उन्होंने ज़बान से कुछ नहीं कहा लेकिन चेहरे पे नागवारी के असरात पैदा हुए, अंधे हो गए। मशहूर वाकया, ये सारे वाकयात बहुत मशहूर हैं, वो चेन में बना रहा हूँ जो बिल्कुल आपसे बहुत करीब वाली चेन आज के ज़माने की है, 21st सेंचुरी ना सही 20th सेंचुरी तक की। और ये तीनों महाराजे वो हैं जिनकी तकलीद आप में से तकरीबन हर एक की फैमिली में हो चुकी, आपके बुजुर्गों ने की। और यहाँ पे जुमला मैं और कह दूँ, अगरचे उसकी आज ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मालूमात के लिए, इस वक्त जो हमारे मर्जी हैं आयतुल्लाह सीस्तानी, वो इस एतबार से अच्छा, उनके जो बाकी जो उनका रोल है वो तो अपनी जगह, वो इस मजालिस में मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन वो इस एतबार से एक बहुत ही यूनिक मर्जी। जैसे आपके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दो अलग अलग तालीमी इदारे हैं, हमारे यहाँ एक कुम का हौजा है एक नजब का हौजा, और आगा सिस्तानी उन मर्जे में से एक है। मैं आम आलिम की बात नहीं कर रहा, मर्जे लेवल का आदमी, वो उमूमन या कुम का हौजा होता है या नजब के हौजे से आता है, इनमें दोनों हौजे जमा हो गए। क्योंकि जब इन्होंने इश्तिहाद की बिल्कुल पहली क्लासेस शुरू की तो आगा रोजर्दी के ज़माने में कुम में पढ़ रहे थे, अब फिर नजब मुंतकिल हुए तो आगा मोहसिन हकीम के भी ख़ास शागिर्द बने और आगा खुई के भी। तो ये तीनों शख्सियतों का आगा सिस्तानी पे बहुत गहरा असर है, चुनाचे उनके भी वाकयात हैं लेकिन टाइम नहीं, मैं ज़रा सा ज़्यादा टाइम ले गया इस तमहीद में। आगा खुद अंधे हो गए, ज़बान से कुछ भी नहीं कहा, और कल इश्तिहाद इश्तिहाद इश्तिहाद के दर्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा। जैसा कि आपने कुसूल सुना कि बाज़ औक़ात आम आदमियों की बहुत सी गलतियां अल्लाह इग्नोर करता है या नज़रअंदाज करता है, और बड़ों की छोटी सी गलती भी पकड़ ली जाती जो अंबिया तक में तरकी औला कहलाती है, लेकिन मैं कहां से कहां बहक रहा हूं वापस आता हूं। और अगर इनके पास वो एक खसूसी गिफ्ट नहीं होता जो खुद आगा सिस्तानी कहते हैं कि आजकल तो तुम्हें बहुत कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, खाके शिफा ओरिजिनल, ओरिजिनल खाके शिफा, वो भी वहाबियों ने जो अटैक किया था करबला में उसके नतीजे में ओरिजिनल खाके शिफा फिर कुछ मराजे के पास आई जिनमें आगा खुद भी थे, और उनके अपने दामाद आगा मुस्तंबित जिन्हें सद्दाम ने जहर दे के शहीद किया, वरना हर एक को मालूम था कि आगा खुद के बाद ये मर्जे बनने वाले, अपने फादर इन ला से 6 साल पहले उनका उनकी शहादत हुई। खैर, उन्होंने वो खाके शिफा लगाई तो दोबारा आंखों की बीनाई वापस आई। तो ये हमारे मराजे और मुश्तहदीन जो मानते हैं कि आज़ादारी की अहमियत को समझो, मातम की अहमियत को समझो, आका हुसैन की अजमत को पहचानो, निज़ाम कायनात चल रहा है आगा हुसैन की उस कुर्बानी के नतीजे में, तो चाहे वो अंबिया का सिलसिला हो और चाहे ये मुश्तहदीन और मराजे का, या अय्याम अज़ा के ये जो दिन और रात आपको मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिला हुआ, इसको ज़ाय ना होने दें। और उस हवाले से बात कि आका हुसैन जनाब यहिया का जिक्र बहुत पसंद कर रहे हैं, और क़ुरान करीम ने जनाब यहिया, मैं अरबी ही नाम लेना पसंद करता हूँ, जॉन नहीं कहना चाहता, कुरान में भी यही नाम आया, जनाब यहिया के हवाले से मुहर्रम की पहली तारीख के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया,

रोजा नहीं रखा, आज कौन सी तारीख है? कमाला हाँ, यकु मुहर्रम, पहली मुहर्रम का ये खास वो दिन है जिस दिन हजरत यहया ने वो दुआ मांगी थी जिसे कुरान ने कहा कि रहमत, जिक्र रहमत रब्बे का अब्दहु ज़करिया, याद करो अल्लाह ने अपने बंदे पर एक रहमत नाजिल की। वो क्या थी? वो तो फिर बाकी वाकया तो मशहूर है कि कहा कि अरे खुदा, इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस है उलमा में, याद करो कि जब उन्होंने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा। दुआ जोर से मांगना बेहतर है, बावाज़े बलंद लाउडली, ये बहुत विस्पर के अंदाज में खामोशी के साथ। जो उलमा ये कहते हैं कि दुआ को हमेशा आहिस्ता मांगना चाहिए, आपके बराबर वाले को भी पता ना चले कि आप क्या दुआ मांग रहे हैं। वो कुरान की इसी आयत को कोट करते हैं कि याद करो कि जब ज़करिया ने आहिस्ता से दुआ मांगी तो अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की। अच्छा, बाज़ उलमा इसका एक और जवाब देते कि नहीं, यहाँ पे कुरान ये नहीं कह रहा है कि दुआ आहिस्ता मांगना बेहतर है, ज़करिया ने आहिस्ता दुआ मांगी थी क्योंकि एक ऐसी दुआ मांग रहे थे कि उनको पता था कि ये लोग सुनेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बूढ़े हो चुके, बीवी भी उस एज में आ चुकी है कि औलाद नहीं हो सकती, और फिर कह रहे हैं कि मुझे एक बेटा चाहिए। लोग कहेंगे बड़े मियाँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, 90 साल की हो गया, कब्र में पांव लटकाए बैठे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हें एक बेटा चाहिए। तो इसलिए कि लोग मजाक ना उड़ाएं, इसलिए उन्होंने आहिस्ता से दुआ मांगी। अब बहरहाल ये हर दुआ का उसूल है कि ख़ास ऐसी दुआएं कि जो लोग सुनेंगे तो मजाक उड़ाएं, उसको एक तरफ रखिए। मेरा अपना मौजू कहाँ से कहाँ जा रहा है। इमाम ने फरमाया कि वो पहली मुहर्रम को हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी तो खुदा ने कहा कि हमने अपनी रहमत नाजिल की। पहली मुहर्रम को जो आदमी रोज़ा रखकर दुआ मांगेगा, अल्लाह का वादा है कि हमारी खास रहमत उस पर नाजिल होती है। अच्छा, अब आजकल तो इंग्लैंड में रोज़े इतने बड़े हैं कि शायद रमज़ान के वाजिब रोज़े भी होते, तो बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती, रोज़े रखें ना रखें, मोमिन रख तो लेता लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा होता, फिर कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं कि 4 बजे रोज़ा तोड़ा जा सकता है या 5 बजे रोज़ा ख़त्म किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो खुलासा ये कि इसमें सुन्नत रोज़े की बात करना ये टू मच है, लेकिन वही मसला कि अगर रोज़ा ना रख सके तो रोज़े के बाद दुआ। अच्छा, अब इमाम ने पहले एक जुमला कहा कि जिसके यहाँ औलाद नहीं होती, ख़ास पहली मुहर्रम की औलाद की दुआ, क्योंकि हजरत यहया ने जिस तारीख को, हजरत ज़करिया ने जिस तारीख को ये दुआ मांगी और अल्लाह ने कहा कि हमने अपनी रहमत नाजिल की, और कैसे नाजिल की, इसी सूरे में 2 आयतों के बाद, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया तुमने पहली मुहर्रम को दुआ मांगी, अब हम तुम्हें बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं, गुड न्यूज़ कि तुम्हें एक बेटा आता होने वाला है जिसका नाम यहया। चूँकि इसके बाद वाली आयत पढ़ना ज़रूरी है ताकि जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो समझ में आए। नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, एक बेटा, इस्महु यहया, जिसका नाम यहया है, लम नजअल मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले ये नाम हमने किसी का नहीं रखा। अब यहाँ देखिए, अभी ठहरिएगा, एक हदीस आ रही जिसमें इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत यहया के लिए इस आयत में 2 वादे किए हैं। नंबर 1, हम वो नाम दे रहे हैं यहया को जिससे पहले किसी को नहीं मिला। नंबर 2, और ये नाम हम रख रहे हैं, लम नजअल, हमने इससे पहले ऐसा नाम किसी का नहीं रखा। 2 बातें। फिर इमाम ने कहा, यही हमारे दादा हुसैन का मसाला था, जब मेरे दादा हुसैन पैदा हुए ये नाम अल्लाह ने आसमान से हुसैन के लिए भिजवाया था, इससे पहले हुसैन का नाम किसी का नहीं था, तो हुसैन का नाम भी सबसे पहले रखा गया और वो अल्लाह की तरफ से आया, जैसे यहया का नाम कुरान में आया, ये हमने रखा है और इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया। फिर इमाम ने आगे तशरीह की कि हजरत यहया और आका हुसैन में कितनी चीज़ें सिमिलर, यहां से इमाम ने बात शुरू की, ये 2 चीजें, नाम इससे पहले किसी का नहीं रखा गया, ना हुसैन का नाम आपको कायनात में आदम से लेके हुसैन की विलादत तक मिलेगा, ना यहया का, और नंबर 2, नाम अल्लाह ने रखा है, ये नाम ना बाप ने रखा है, ना नाना ने रखा, ना माँ ने रखा, ना खानदान की किसी फर्द ने। 2, फिर इमाम ने 3रा जुमला इरशाद फरमाया कि हजरत यहया भी वो कि जिनका प्रेगनेंसी का टाइम 6 महीने था, और आका हुसैन के लिए भी 6 महीने। फिर इमाम ने फरमाया यहया भी वो हैं जिनकी शहादत पर 40

दिन तक सूरज बिल्कुल सुर्ख रहा, ऐसा लग रहा जैसे उसमें से खून निकल रहा, और आका हुसैन की शहादत के बाद भी 40 दिन तक सूरज जो था वो खून खून जैसे रंग वाला रहा। फिर आका हुसैन ने कहा, फिर इमाम ने फरमाया, और यहया भी वो कि जिनको कत्ल करने वाला एक, अब ये बहुत अहम जुमला मैं कह रहा हूँ, अगरचे मिंबर पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूँकि 21st सेंचुरी के इस्लाम के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये जुमला बनने वाला, इसलिए बता रहा हूँ, फरमाया कि यहया भी वो थे जिनको कत्ल किया एक ऐसे शख्स ने जो जायज़ तरीके से जायज़ निकाह के नतीजे में पैदा नहीं हुआ, जिसे अरबी में वलदुज़्ज़िना कहते हैं, और आका हुसैन को शहीद करने वाला भी ऐसा ही एक नाजायज़ औलाद या वलदुज़्ज़िना था। ये याद रखिए, ये कोई मामूली बस एक आम कोई गाली वाली टाइप का जुमला नहीं है, इसके पीछे पूरी फिलॉसफी इस्लाम की छुपी। और अगर आप 21st सेंचुरी में देखेंगे तो यह मसाइल को न जानने के नतीजे में या गलत तलाक के नतीजे में यह चीज़ कसरत से आपको नजर आएगी, लेकिन आराम से इत्मीनान से बात करूंगा, आज कम वक्त है, इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। और इमाम ने फरमाया, और यहया भी वो थे जिनकी शहादत के बाद 40 दिन तक आसमान से खून के कतरे नाजिल होते रहे और ज़मीन का जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे खून नजर आता, और आका हुसैन भी वो हैं कि जिनके बाद 40 दिन तक, वो सूरह दुखान में एक इशारा भी, आसमान से खून की बारिश हुई और ज़मीन से खून उबला, जो जनाब नूह के तूफान में दो चीज़ें थी, आसमान से पानी और उस बुढ़िया औरत के तंदूर से पानी। गर्जी कि इमाम मासूम जनाब यहिया और आका हुसैन की सिमिलर बातें बयान कर रहे हैं, उसमें एक बात और आती, सातवीं बात, सेवेंथ, और ये जनाब यहिया के लिए नहीं है, ये उनके वालिद के लिए, इसको गौर से सुनिए, ये हर मोमिन का जज्बा होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ एक मैसेज भी है, हर ज़ियारत के तकरीबन आखिर में जब अस्हाब इमाम की शोहदा की ज़ियारत पढ़ते, फया लैतनी कुंतु माकुम, बहुत अहम है ये जुमला, ये खाली बस ज़बान पे एक जुमला जैसे तोता बोलता है उस तरह जारी नहीं कर रहा, इसके पीछे भी एक बड़ी फिलॉसफी। लेकिन अब इमाम फरमाते कि एक बेटे की तमन्ना की जनाब ज़करिया ने, पहली मुहर्रम को रोज़ा रखा और दुआ की, फरमाते हैं जिसके औलाद ना हो वो पहली मुहर्रम का रोज़ा रखे और दुआ करे। फिर इमाम ने खुद ही इसी रैयान इब्ने शबीब की रिवायत में खुद ही इमाम ने कहा कि बल्कि खाली औलाद नहीं, अल्लाह ने यह कहा कि हमने ज़करिया की दुआ कबूल की है, पहली मुहर्रम को जो दुआ मांगोगे वो अल्लाह यकीनन कबूल करेगा, पहली मुहर्रम दुआ का दिन, कल का दिन। अब ये बात जो मैं आज कह रहा हूँ, अगर ये आज मिस हो जाती तो पूरा एक साल आपको वेट करना होता, क्योंकि शब कदर आपके यहाँ मशहूर है, उसकी दुआएँ आप मांगते, क्योंकि 15 शाबान आपके यहाँ मशहूर है, उसकी दुआएँ आप मांगते, क्योंकि हज में अराफात की दुआएँ आमाल मशहूर है, वहाँ पे लोग दुआएँ मांगते, लेकिन पहली मुहर्रम को भी जहन में रखिए। और एक जुमला जो मैंने कहा था उसको रिपीट करूँगा कि खुद हमारा दिल भी नहीं चाहता कि पहली मुहर्रम को अपने पर्सनल मसले अल्लाह के सामने रखे। आका हुसैन का गम, कायनात मातम कर रही, आसमान रो रहा है, ज़मीन रो रही है, शहजादी कौनैन का मातम शुरू हो गया, और हम कभी अपनी रोज़ी के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी रिस्क के लिए, कभी तालीम के लिए, कभी वीज़े के लिए, कभी बेटियों की शादी के लिए, कभी औलाद के लिए दुआ मांगे, दिल नहीं मानता। लेकिन आ रहा हूँ इस तरफ, यही मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा, उससे पहले एक छोटी सी बात, ये दुआ क्यों मांगी हज़रत ज़करिया ने? कुरान ने बज़ाहिर कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे अपना एक वारिस चाहिए, इमाम फरमाते नहीं, इसकी एक और वजह, और बहुत अहम वजह, वो यह है कि जनाब ज़करिया को अल्लाह ने पंजतन के नाम बताए थे, हर नबी को बताए गए, आदम की तो तौबा ही कबूल हुई है इन्हीं नामों से, हज़रत नूह की कश्ती में तो जो पहला बोर्ड लगा था वो ये पंजतन के नाम थे, हर नबी जनाब ज़करिया। अच्छा, इनके ऊपर बाद में बहुत मजालिम हुए, जिस तरह इनको आरे से काट के दो टुकड़े किया गया, हलब की ज़ियारत जिन्होंने की थी उनको मालूम है, लेकिन इतनी सारी बातें मैं अगर छेड़ दूंगा तो फिर कोई बात भी कंप्लीट नहीं होगी, छोड़ दीजिए। जनाब ज़करिया ने बड़े मसाइब बर्दाश्त करके शहादत को हासिल किया, बॉडी के दो टुकड़े किए गए, लेकिन जब यह पंजतन के नाम तालीम की तो जनाब ज़करिया ने कहा था ना कि खुदा बंदा, ये जो 5 नाम तूने बताए, मैं पहला नाम लेता हूँ बिल्कुल ठीक नॉर्मल रहता हूँ,
दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम,

जब पांचवा नाम हुसैन मेरी जबान पे आता है तो जबान पे हुसैन का नाम आता है, आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगते और मेरा दिल रोने लगता है। खुदा बंदा कौन सा नाम कि खुद ब खुद दिल रोता है, आंखों से आंसू जारी होते। एक बार फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुभानहू व तआला आका हुसैन के मसाइब का स्पीकर रिसाइटर जाकिर बना और कहा जकरिया इसकी वजह है यह कह के मसाइब हुसैन बताए। जनाब जकरिया ने उस वक्त दुआ मांगी कि मैं और तो किसी तरह करबला में आका हुसैन का साथ नहीं दे सकता हूं, कम अज कम ए खुदा इतना कर दे कि मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे जो हुसैन के बेटों की तरह तेरे रास्ते में बेदर्दी से शहीद किया जाए और उसकी मुसीबत में मैं सब्र करके अपने आका हुसैन की मुसीबत में शरीक हो जाऊं। अब जैसे आशूरे के दिन आप लोग फाका करते हैं ना, वो क्यों करते हैं कि आका हुसैन और उनके बच्चे उस दिन भूखे प्यासे थे। हम करबला में इस वक्त नहीं, यानी 61 हिजरी के करबला में, कम अज कम जिस जमाने में है उस दिन हम भूखे और प्यासे रहे। यहिया ने कहा, जकरिया ने कहा कि वो हुसैन मारे जाएंगे, मैं चाहता हूं मेरा एक बेटा भी मारा जाए ताकि हुसैन के गम में थोड़ा सा शेयर मेरा आ जाए। बस ये जहन में रखिएगा जुमला, नबी तक की यह ख्वाहिश है कि आका हुसैन के जिहाद में उसका कोई शेयर हो। अय्याम अज़ा हमें मैसेज देते हैं कि शुरू होगा ये अय्याम अज़ा हुसैन का मातम, उसकी फजीलत आपने सुनी। कुछ वाकयात जो आपने सारी जिंदगी सुने हैं मैंने सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे रिपीट किए, लेकिन असर आखिरी इस पॉइंट पर आइए कि ये सोचिए कि ये अय्याम अज़ा आ गए, इसमें आका हुसैन के जिहाद में हमारा शेयर क्या होगा। जनाब कासिम की तरह सोचिएगा, यानी मर्द भी सोचे, औरतें भी सोचे, बूढ़े भी सोचे, जवान भी सोचे, बच्चे भी सोचे कि कल के जिहाद में हमारा शेयर क्या होना चाहिए। कल के जिहाद से मेरी मुराद जनाब कासिम का जुमला था, और यही इंशाल्लाह 21st सेंचुरी में अगर हम दीन पे अमल कर पाए तो आका हुसैन के जिहाद में हमारा सबसे बड़ा शेयर होने वाला है। लेकिन उस तक जाने से पहले यह बात कंप्लीट कर दूं। जनाब जकरिया ने पहली मुहर्रम को रोज़ा रखा और दुआ मांगी। अब अगर रोज़ा नहीं रख सकते यहाँ के हालात में, यानी हालात से मतलब ये कि इतना लंबा रोज़ा है, इतना बड़ा रोज़ा है, वेदर भी समर का है, तो दुआ को मिस ना करना। यह ख़ास दुआ है इस पहली मुहर्रम की, जिस पहली मुहर्रम को खुदा ने रहमत रब कहा, जिक्र रहमत रब्बिक, अपने रब की इस रहमत को याद करो। और यहाँ वो आखिरी बात मैं बयान करूँ जिसके अंदर आखिरी बात के आखिर में एक हदीस आई जो आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये कल कंप्लीट होगा। और वो ये कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारा क्या दिल चाहता कि हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम उस वक्त अहले बैत के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में पेश करें जब शहजादी फातिमा ज़हरा सफ़े अज़ा बिछा के अपने लाल का मातम कर रही, नहीं। लेकिन आपको पता है कि आमाले आशूरा की दुआ अलकमा भी हमारी कितनी हाजतें हैं। आशूर के दिन, आज तो फिर भी अभी कल पहली मुहर्रम होगी, फर्स्ट ऑफ मुहर्रम, जब आका हुसैन अभी करबला पहुंचे भी नहीं, सेकंड को पहुंचे हैं ना, आशूर तक के दिन। क्यों? ये अहले बैत की सीरत का एक बहुत अहम हिस्सा। अहले बैत जवाद हैं, अहले बैत करीम है। दुआ इफ्तिताह में अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ना ये लफ्ज़ जवाद उन करीम। अहले बैत जवाद हैं, अहले बैत करीम। इमाम ज़माना की दुआ ज़ियारत में जुमला आया है ना कि आप करीम हैं मिन औलादिल किराम, और करीम ख़ानदान से हैं, करीम बाप की औलाद, जवाद भी हैं करीम भी हैं, बल्कि मासूमा कुम का तो लक़ब ही करीम है अहले बैत। ये करीम है, ये जवाद है। इसका मतलब क्या हुआ? जवाद कहते हैं वो आदमी, एक होता है अरबी में सखी। अच्छा, अब ये मिंबर से बहुत पढ़ा जाता है तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। सखी, सखी के माने सखावत करने वाला, लेकिन वो सखावत करता है जब उससे कोई मांगे। जवाद कहते हैं बगैर मांगे लोगों को देने वाला। आपको जरूरत नहीं है कि उसके आगे हाथ फैलाएं या मांगे या उसे कहें, वो खुद ही आकर आपके सारे प्रॉब्लम्स को हल करेगा। जवाद और करीम, करीम यह भी मिंबर से पढ़ा जाता है लेकिन इसको जरा सा बयान करना होगा जल्दी जल्दी। एक होता है अरबी में बखील, एक होता है लईम। लईम कहते हैं इंतहाई कंजूस आदमी जो खुद भी ना खाए दूसरों को भी ना खिलाए। बखील माने जो खुद तो खाते

है दूसरों के लिए कुछ नहीं। इसी तरह एक सखी है जो खुद भी खाता है दूसरों को भी देता है, और एक करीम है जो खुद फाके करता है लेकिन अपने आगे की रोटी उठा के किसी यतीम, किसी मिस्कीन, किसी असीर को देता है। अहले बैत सखी नहीं है। हम कह दें उनके लिए लफ्ज सखी कहीं, वो अलग बात है, गुनाह नहीं, वो करीम है। यानी खुद वो फाके करेंगे आपको देंगे, खुद मुसीबतों में रहेंगे आपके लिए राहत का इंतजाम करेंगे। अहले बैत के तरीके के खिलाफ है कि कोई उनका मातम करना शुरू कर रहा और वो कहें कि नहीं बस हमारा मातम करो हमारा हक़ है, नहीं कहते पहले तुम बताओ तुम्हारे मसले क्या हैं, पहले हम तुम्हारे मसले हल करेंगे, इसके बाद अपने मसले की तरफ आएंगे, मसाला तो नहीं अपने गम की तरफ आएंगे। अहले बैत करीम है। चुनाचे अगर कोई ये कहे कि पहली मुहर्रम हो के आशूरा, इतना बड़ा गम है उस दिन मैं कैसे दुआएं मांगू, अहले बैत इससे अपनी तौहीन समझते। आओ हमसे मांगो, हम तो बगैर मांगे देने वाले, लेकिन जब मांगो हमसे तो हम ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि हबीब इब्ने मुजाहिर की शहादत में एक जुमला पढ़ूंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए, अभी भी सुन लीजिए। जब सैदानियों का लुटा काफिला कूफे में एंटर हुआ था और हबीब का बेटा आया था और कहा था कि चौथे इमाम से कि मैं हबीब का बेटा हूं, तो चौथे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा और कहा फूफी अम्मा हबीब का बेटा आया। जो जनाब ज़ैनब ने कहा तुम्हारी माँ कहाँ है, तो करीब के घर की छत पर एक औरत बैठी आवाज़ देती है मैं बेवा हबीब। जनाब ज़ैनब का जुमला क्या था कि मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे शोहर का पुरसा दूँ। शहजादी आपके घर में इतनी शहादतें हुई हैं, पुरसा तो आपको लेना है। लेकिन वो करीम है, अपने शहीदों का पुरसा बाद में लेंगी, पहले तेरे शहीद का पुरसा दिया जाएगा। यह अहले बैत का वो तरीक़ेकार है जिसकी हल्की सी झलक, बस मैं इख्तिताम पे पहुंच गया। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी के वाक़े में मिलती है। 21st सेंचुरी का एक नारा, ये भी अगर चाहिए तो काफ़ी पुराना है, लेकिन 21st सेंचुरी में ये चीज़ बहुत बढ़ गई है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। इस्लाम में देयर इज़ फ्री लंच, और ये इंशाल्लाह 21st सेंचुरी के हवाले से 2-3 दिनों के बाद बात आएगी। अबू ज़र ग़फ़ारी अल्लाह के रसूल के कितने अहम सहाबी हैं कि जिनके लिए पैगंबर ने कहा कि है अबू ज़र इस्लाम का एक वाजिब है जो मैं तुम्हें उससे एग्जेम्प्ट करता हूँ, ये वाजिब तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत लंबा वाकया है, टाइम नहीं है, शायद कल थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाऊँ, पूरा वाकया तो नहीं पढ़ सकता। और वो वाजिब जिससे तुम्हें एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, और किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, सलमान फारसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, वो है तकिया। हालात हों तो हर एक को तकिया वाजिब है, तुम पर से तकिया माफ। चुनाचे अबू ज़र तकिया नहीं करते। बड़े बड़े दुश्मनान अहले बैत टॉप ऑफ द लिस्ट जो अमले आशूरा के अंदर जिनका आप तस्करा भी करते, ओपनली उनके सामने उनके मुंह पे जाके बता देते थे कि तुम्हारी ये गलती। नतीजा क्या हुआ, अबू ज़र को एग्जाइल में भेज दिया गया, हर एक को वाकया मालूम है, उसकी तफसील में नहीं जा रहा। और अबू ज़र का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हाजियों का आखिरी काफिला मक्के जा रहा था, 5th of ज़िलहिज। 8th ज़िलहिज को तो हज शुरू हो जाता, अब मदीने से मक्के का डिस्टेंस कितना, हाजियों का आखिरी काफिला भी जा चुका था, एक काफिला जरा लेट हो गया, ये मिस्र से आ रहा, इसमें मालिक अश्तर, और ये बहुत तेजी में है, बहुत जल्दी में है कि हज की डेट से पहले पहले मक्का पहुंचना। भाई एक आदमी इतनी दूर से आया, पता चले कि बिल्कुल वह बॉर्डर लाइन के ऊपर है, हो सकता है उसका हज मिस हो जाए, कहाँ मिस्र से आ रहा, मिस्र उस जमाने का कितना डिस्टेंस। बहुत जल्दी में कि देखा सड़क के किनारे एक बुढ़िया बैठी ज़ईफ, हाथ दे के इशारा कर रही है रुकने का। दिल तो नहीं चाह रहा था, हज निकला जा रहा है, आज 5th of ज़िलहिज है और मैक्सिमम 9th of ज़िलहिज को जोहर तक अरफात पहुँचना। लेकिन एक ज़ईफ़ा को बैठे देखा, मालिक अश्तर जैसे आदमी की क़यादत में काफिला। मालिक अश्तर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस्लाम में इस वाक़े से हुआ। रुक क्या, कहा क्या बात, कहा मेरा बूढ़ा शौहर मर गया, उसकी मैयत पड़ी है, कोई यहाँ पे नहीं है, तो जंगल है ना एग्जाइल, क्या एक मुसलमान की मैयत को गुस्ल कफन नहीं दोगे, हज की जल्दी है। लेकिन ये जो सुना घबरा के कहा तो अच्छा है कौन जो जंगल में मरा, कहा अबू ज़र ग़फ़ारी। सबकी चीखें निकल गई, आंखों में आंसू आ गए, अबू ज़र जैसा अजीम सहाबी और इस तरह से मौत आई है। घबरा के सब अपनी अपनी सवारियों से उतरे, कहा बताओ कहाँ है मैयत, ये तो हमारी बहुत बड़ी सआदत है, शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें डिले करा दिया ताकि ये हमको अबू ज़र के गुस्ल कफन का मौका मिले, का खबरदार अभी गुस्ल कफन न करना,
ابو ذر وصیت کر کے گئے تھے کہ جو میری میت

उसको गुस्लो कफन देने आए, पहले उसको खाना खिलाना, उसके बाद उससे कहना कि मेरी मैयत को गुस्लो कफन दो। ये वसीयत करके गए, पहले तुम्हें खाना खाना होगा। आज भी ये मुस्ताहब है कि मैयत वसीयत करे, लेकिन अबू ज़र क्योंकि करीम लोगों के मानने वाले, अहले बैत के, अहले बैत कहते हैं कि हमारी मैयत बाद में है लेकिन पहले जो आने वाले इनका हक अदा किया जाए। भाई यही फिलॉसफी जहन में रख के पहली मुहर्रम, और फिर अबू ज़र की एक बहुत अहम हदीस आती है, लेकिन कल, ये पहली मुहर्रम ये हदीस जहन में रख के कि अहले बैत करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है। वो कहते हैं कि हमारा हक बाद में अदा करो, पहले हम चाहते हैं कि तुम्हारी मदद करें। अपनी जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कल वर्किंग डे है, शायद टाइम ना मिले, तो आज की रात मिस ना कीजिएगा। और ये आज की रात अय्याम अदा की पहली रात तो बनती है, लेकिन दरअसल अय्याम अदा की पहली रात यूं अगर हम कहें टेक्निकली तो आज की रात होगी, लेकिन एक्चुअली 28th ऑफ रजब, जब हुसैन मदीने को अलविदा कह रहे हैं। आपको याद होगा ना नवे इमाम का वाकया, जब आठवें इमाम को मामून रशीद ने अपना वली अहद बना के बुलाया, कितना बड़ा क्राउन प्रिंस, पूरा प्रोटोकॉल, पूरा इस्तकबाल, बहुत ही वार्म वेलकम। लेकिन आठवां इमाम जब मदीने से चल रहा था, तो जैसे आप भी अलविदाई जियारत पढ़ के निकलते हैं ना, आठवें इमाम ने अपने जद रसूल खुदा की कब्र की अलविदाई जियारत पढ़ी और बाहर आए, वली अहद बनने जा रहे। क्या देखा, नवे इमाम जमीन पे बैठे और मिट्टी उठा उठा के अपने सर पे डाल रहे। घबरा के आठवें इमाम ने पूछा, बेटा ये क्या? कहा, बाबा जिस बच्चे को अपनी यतीमी का यकीन हो जाए वो सर पे मिट्टी ना डाले तो क्या करे, अभी 2 साल बाकी हैं यतीमी में, अभी तो बज़ाहिर यतीमी के आसार दूर दूर तक नहीं है, अभी तो क्राउन प्रिंस बन के जा रहे हैं। लेकिन ये हम और आप हैं जो जाहिरी वाकयात देखते हैं, वो इमाम मासूम जो देखता है कि मेरे बाबा का मदीने से जाना, बस मेरे बाबा की शहादत शुरू हो गई, 28 रजब, बस यहीं से गम के दिन शुरू हो गए हैं। बल्कि जुमला इस तरह कह दूं कि यहीं से फातिमा जहरा का मातम शुरू हो गया है। लाल, तू मदीने से नहीं जा रहा, मुझे पता है कि तू दुनिया से जा रहा। और किस अंदाज से हुसैन मदीने से निकले। मेरे मरहूम उस्ताद अदीब आजम मौलाना जफर असद साहब क़िबला ये रिवायत बहुत पढ़ते, 28 रजब की सवारियां आ गईं, आपने रवानगी के हालात तो मुख्तलिफ मजलिसों में सुने, लेकिन उसी के दरमियान की एक रिवायत, हुसैन ने सैदानियों को बुलाया, महमिले और अमारियों के साथ ये सवारियां हैं, क्योंकि 28 रजब का काफिला, 11 मुहर्रम का काफिला तो नहीं है ना, तो अभी 28 रजब का काफिला। और जब सारी बीवियां अपनी सवारी पे बैठ गई, तो हुसैन खानदान के बुजुर्गों को खुदा हाफिज कहने के लिए घर में दाखिल हुए। सबसे पहले सामने ही अपनी सगी फूफी मौला अली की बड़ी बहन उम्मे हानी नजर आई। उम्मे हानी ने देखा हुसैन ने लिबास पहना हुआ है सफर का, घबरा के कहा कि बेटा कहाँ का इरादा? कहा, जा तो मक्का रहा हूं लेकिन असल में मुझे कूफे जाना। भाई इतना सुनना था, उम्मे हानी ने तड़प के कहा, बेटा कूफे का इरादा न कर, क्योंकि 3 दिन से मैं जिन्नात के रोने की आवाज सुन रही हूं, और जब हमारे घर पे कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है तो ये आवाज मैं सुना करती हूं। जब तेरा नाना दुनिया से गया तब ये रोने की आवाज मैंने सुनी, जब तेरी माँ दुनिया से गई तब ये आवाज मैंने सुनी, और जब तेरा बाबा दुनिया से गया तब ये आवाज मैंने सुनी, अब जब तेरा भाई दुनिया से गया तब ये आवाज मैंने सुनी। बेटा अपने सफर का इरादा देखिए, 28 रजब है, अभी 10 मुहर्रम नहीं, लेकिन जिन्नात को भी पता है कि आगाज हो गया मसाइब का। हुसैन ने कहा, नानी फूफी, जो अल्लाह ने लिख दिया है लोहे महफूज पर वो तो होकर रहेगा, खुदा हाफिज, ये कह के आगे बढ़े और उस बीबी के पास पहुंचे जिसने शहजादी फातिमा के बाद हुसैन को पाला था। इमाम को पालने वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर एतबार से, यानी रसूल की बेवा और हुसैन की नानी उम्मे सलमा। उम्मे सलमा ने भी जब देखा हुसैन ने ट्रेवलिंग का लिबास पहना, घबरा के कहा, बेटा क्या सफर कर रहा है? कहा कि हाँ नानी, मुझे सफर करना। कहाँ का सफर कर रहा? कहा मुझे इराक और कूफे की सरजमीन पे जाना।

बस एक बार उम्मे सलमा ने तड़प के कहा, बेटा उस सरजमीन की जानिब न जा, वहां तेरा बाबा भी गया था तो शहीद किया गया था। तेरे नाना ने मुझसे कहा था, जब मेरा हुसैन इराक की जानिब जाए तो इस तरह खुदा हाफिज कहना जिस तरह मरने वाले को अलविदा कहा जाता। हुसैन ने सर झुका के कहा, नानी आपने तो नाना से खाली इराक का नाम सुना था, कहिए तो मैं आपको वो जमीन दिखा भी दूं। ये कह के आगे बढ़े। नवासे ने नानी की आंख पे हाथ रखा। उम्मे सलमा ने देखा, मैं मदीने में हूं लेकिन मदीना गायब हो गया, जमीनें मेरे सामने से गुजरने लगी। आखिर में एक तपता हुआ सहरा नजर आया, जलती हुई रेती नजर आई, एक जानिब कुछ खेमे लगे हुए हैं, दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी फौज है। और उम्मे सलमा ने क्या देखा कि इन दोनों के दरमियान जमीन के ऊपर एक छोटे से बच्चे का लाशा पड़ा है। घबरा के कहा, हुसैन ये किसका लाशा है? कहा, नानी देखा नहीं, सारा बदन टुकड़े टुकड़े है, ये मेरे हसन का लाल, ये मेरे हसन का यतीम कासिम था, घोड़ों तले पामाल हुआ। उम्मे सलमान की निगाह एकदम आगे बढ़ी। कहा, बेटा और ये कौन है एक जवान जिसके कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल तो यहां से भी नजर आ रहा? हुसैन ने सर झुका के कहा, नानी ये आपके हुसैन का 18 साल का मालका अकबर है, बर्छी का फल खा के जमीन पे गिरा। और एक मर्तबा उम्मे सलमा की निगाह पड़ी, क्या देखा, एक टीला है, तिल्ले ज़ैनबिया एक टीला है, उस पर कोई शख्स खड़ा है लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसके सारे चेहरे पे खून लगा हुआ है। हाँ, हाथों पे एक छोटा सा लाशा नजर आ रहा है जिसके गले में तीर पे बस। घबरा के कहा, हुसैन बेटा और ये कौन है और ये किसका लाशा लेके खड़ा है? सर झुका के कहा, नानी ये आपका हुसैन है, असगर को पानी पिलाने लाया, पानी तो न मिला, मेरे असगर को तीन भाल का तीर मिला। और आखिर में उम्मे सलमा की निगाह पड़ी, क्या देखा, एक बीबी है बेचैनी और बेकरारी से कभी खेमे से बाहर आती है, कभी खेमे के अंदर जाती है, कभी मैदान का रुख करती है, कभी मदीने का रुख करती है। तड़प के कहा, बेटी और ये कौन, बेटा ये कौन है? कहा, नानी आपने नहीं पहचाना? अरे ये आपकी ज़ैनब है, अपने भाई के सीने पर शिवर को देख रही है, खंजर चल रहा है, नाना को पुकार रही है, नाना जरा आके देख तेरे हुसैन पे क्या गुजरी। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। परवरदिगार इन मोमिनीन और इसी तरह मोमिनात के इस गिरिए का वास्ता इनको और इनके घर वालों को और इनकी औलादों को और इनके रिस्क के ज़राए को दुनिया और आखिरत की हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा। लेकिन गमे हुसैन हमें सारी ज़िंदगी बल्कि मरने के बाद बल्कि जन्नत में भी अता फरमा। खुदावंदा सफ़े अज़ा पर बैठने वाले और करीम इब्ने करीम की सफ़े अज़ा पर बैठने वालों की सारी हाजतों को पूरा फरमा। हमारे तमाम मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मज़लूम मोमिनीन मुसलमान और आम मज़लूम इंसान है उनकी जान माल और इज़्ज़त को ज़ालिमों के शर से महफूज फरमा और इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।

मुझको तन्हा ना कभी छोड़ के जाना पापा सलावत अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद.

खुशी का इंतजार करती है, हम गम का इंतजार करते हैं। दुनिया वालों में और करबला वालों में बहुत फर्क है। अजीजाने गिरामी, हमने पहले करबला सुना था, आज हम करबला देख भी रहे हैं। पहले हमने हुसैन इब्ने अली को सुना था, आज हम हुसैनियत अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले हमने यजीद का नाम सुना था, आज यजीदियत का किरदार देख रहे हैं। ये मुहर्रम कुछ और है, ये मुहर्रम वो मुहर्रम नहीं है। आज अजीजाने गिरामी, दुनिया में ये ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एविडेंस पेश करूंगा। आज दुनिया और दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स के जहन में एक सवाल है, भाई पूरी दुनिया डरती, आप क्यों नहीं डरते? पूरी दुनिया झुकती, आप क्यों नहीं झुकते? क्या है आपके पास? ये हिंदुस्तान के बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगा मेंबर से, शायद हिंदुस्तान के टॉप 5 रिपोर्टर्स में से एक हैं, उनके घर पे मैं बैठा था, अपने सर पे हाथ रख के वो क्या कह रहे थे पता है? गजब जज्बा है तुम्हारे कौम के अंदर। हमें लग रहा था कि हम ये जुलूस जो उठाते हैं यहां से उठा के वहां तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था ये जुलूस का असर पूरी दुनिया में नजर आता है। आज अजीजाने गिरामी, करबला समझाने की जरूरत नहीं है, करबला पूरी दुनिया देख रही है। बस जब लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है जो दुनिया के पास नहीं है, हम एक लफ्ज में जवाब देते हैं, हमारे पास करबला है जो तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास हुसैन इब्ने अली है जो तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास फलसफे करबला है जो तुम्हारे पास नहीं है। बस इन मजलिसों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये करबला क्या करबला है जो पूरी दुनिया को बेदार कर सकती है। अजीजाने गिरामी, करबला रस्म का नाम नहीं है, करबला एक मूवमेंट का, एक तहरीक का नाम है, और तारीख में सबसे कामयाब मूवमेंट का नाम करबला है। आप मटेरियली देखें, सिर्फ लॉजिस्टिकली और मटेरियली देखें, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो उस जमाने में लॉजिस्टिकली पावर के हिसाब से, मीडिया के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट है, उसके मुकाबले में 72 खड़े होते हैं, एक सहरा में होते हैं, उस सहरा में ये पावरफुल गवर्नमेंट उन्हें कत्ल कर देती है। उसका असर आज यह है कि वो पावरफुल गवर्नमेंट जो यजीद की थी, उसने हुसैन को कत्ल किया, उसका असर यह है कि आज की दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट इसी हुसैन के असर की वजह से घुटनों पर आ गई है। लबैक या हुसैन। अजीजाने गिरामी, बस करबला एक तहरीक का नाम है, एक मूवमेंट का नाम है, अपने वजूद को तब्दील कर देने का नाम है। इमाम खुमैनी कहते हैं करबला आदम साजस्त, यानी करबला वो फैक्ट्री है जहां से, जहां पर एक नजिस घुसता है, हुर बन के बाहर निकलता है। करबला आदम साज है, इंसान बनाती है करबला, चाहे वो जैसा हो, जब ये करबला की वादी में आता है तो हुर बन के बाहर निकल जाता। अजीजाने गिरामी, करबला सिर्फ पाक लोगों के लिए नहीं है, करबला गुनहगारों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, जो पूरा साल यहां वहां भटक रहे थे,

लेकिन आज फर्श अज़ा पे बैठ के हुसैन को कह रहे हैं, मौला मैं गुनहगार हूं, तूने हुर को कबूल कर लिया था, मुझे भी कबूल करेगा तू? अजीजाने गिरामी, बस हमारे पास एक ऐसा सरमाया है जो किसी के पास नहीं। इस सरमाए को जितना हम समझेंगे उतना ज्यादा इससे फायदा उठा सकते हैं। गौर करिए, तीन स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है जिसे कहते हैं मोहब्बत। हम सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं इसलिए यहां हैं, बगैर मोहब्बत के तो नहीं आते। मोहब्बत है, मोहब्बत बजाते खुद बहुत बड़ा दर्जा है, मैं इंशाल्लाह आज उस पर बात करूंगा। लेकिन मोहब्बत के बाद अगला मर

तक पहुंचना है जहां हुसैन थे। उस जमाने में जब हुसैन ने खैमा लगाया सिर्फ 72 पहुंचे। आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। आज 72 लाख 72 करोड़ हैं जो हुसैन पे कुर्बान होने को तैयार हैं। ये करबला का असर है। अजीजाने गिरामी, बस हम शुरुआत इब्तिदा यहां से करते हैं कि जिसको जो भी मिला उसको हुसैन के दर से मिला है। इमाम खुमैनी हुसैन के दर से बने। रहबर मुअज्जम हुसैन के दर से मिले, उनकी गुलामी से बने हैं। आयतुल्ला सिस्तानी आज जो हैं वो हुसैन की गुलामी की वजह से। बस ये जो आप फर्श अज़ा पे बैठे हैं इसकी अजमत मैं एक एक करके आपको बताता हूं ताकि हम इस फर्श अज़ा से अपनी तरबियत के सफर का आगाज कर सकें। आप गौर करें कि हदीस है कामिलुज़ ज़ियारात में, उस हदीस में एक शख्स हमारे छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आता है। वहां के इमाम से कहता है क्या इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कब्र के अंदर मौजूद है, जिस्म भी उनका मौजूद है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तेरा कद बहुत छोटा है लेकिन तूने सवाल बहुत बुलंद किया है। फिर कहते हैं कि इमाम हुसैन इस वक्त अर्श मौल्ला पर हैं, रसूल अली और फातिमा जहरा के साथ हैं। कहते हैं वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तवज्जो दो खास गिरोह पर होती है। कौन से दो गिरोह हैं?

कहा एक जो करबला की ज़ियारत के लिए जाता हो और दूसरा जो हुसैन का गम मनाता हो। मौला हुसैन खुद खास तवज्जो होती है। फिर कहते हैं कि इससे बढ़कर ये है कि जो हुसैन के गम में आंसू बहाता है मौला उसके लिए अस्तगफार पढ़ते। ये फर्श अज़ा की अजमत समझें। आयतुल्ला मरशी नजफी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनकी अजमत की कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि जब वो नजफ में रहते थे तो नजफ में ब्रिटिश आके अहले बैत की लिखी हुई किताबों को ख़रीद रहे थे ताकि वो लंदन के म्यूज़ियम में जाके रखें। आयतुल्ला मरशी नजफ़ी के पास पैसा नहीं था उनसे मुकाबला करने का, बहुत गुर्बत की ज़िंदगी थी। कितनी गुर्बत थी आप जानते हैं? उनके बेटे बताते हैं कि जब नजफ में होते थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ पैसा नहीं होता था, तो ये उलमा जब तालिबे इल्म थे तो रात के अंधेरे में निकलते थे, लोगों के फेंके हुए फलों को घर लाते थे, उनके छिलकों को धो के खाते थे। ऐसे बनते हैं आयतुल्ला मरशी नजफी। उस वक्त जबकि फाइनेंशियल हालत ऐसी है, उसी वक्त आयतुल्ला मरशी नजफी क्या कर रहे हैं? इस्तेजारी रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े के पैसे ले रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजों के पैसे ले रहे हैं, लेकिन इससे खुद नहीं खा रहे हैं, इससे अहले बैत की किताबें खरीद रहे हैं ताकि ब्रिटिश ना जाए ले जाए। आयतुल्ला मरशी नजफी कुंभ में, इंशाल्लाह आप जाइए ज़ियारत को जरूर, तो कुंभ में एक लाइब्रेरी है जो आयतुल्ला मरशी नजफी ने इन पैसों से बनाई, जो वन ऑफ द बिगेस्ट अहले बैत की लिखी हुई किताबों की लाइब्रेरी है। कैसे खरीदी? ऐसे पैसों से खरीदी। फकीह हैं, मुज्तहिद हैं, किताबें लिखी हैं, शागिर्द हैं, हौजा बनाया है। जब उनका इंतकाल होता है तो अपने इंतकाल के वक्त कहते हैं कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे लाशे को फर्श अज़ा पे मिंबर के नीचे रखना, शायद फर्श अज़ा के वसीले से मुझे निजात मिल जाएगी। ये अज़ीज़ाने गिरामी, कभी ऐसा ना हो कि हमें मुहर्रम मजलिस एक रूटीन लगने लगे कि जाना है। नहीं, इससे लोग कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि हमारी निगाहें वो इलाही निगाहें नहीं हैं, तो शायद हम वो डेप्थ में नहीं देख पाते, लेकिन इसका असर जो है मानवी वो अजीब है। अजीजाने गिरामी, बस हमें सबसे पहली मंजिल पे आके अपने आप को यहाँ देखना है कि मैं इस मुहर्रम में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? फर्श अज़ा से शुरू होता है। और फर्श अज़ा पे मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे गोल सेटिंग करेक्ट करना है कि मुझे हुसैन से कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मैं यहां से हुसैनी बन के पलटूं। आप तो तसव्वुर करें कि आप इमाम हुसैन के खैमे में करबला में पहुंचे, इमाम हुसैन ने आपको इतने पैसे दे दिए, इतने जवाहरात दे दिए, इतने कपड़े दे दिए, इतनी जमीन दे दी, इतने आपके बच्चों के लिए दुआ कर दी, सब कर दी। आप इमाम हुसैन को कहें ठीक है आप शहीद होते रहे मैं जा रहा हूं, करेंगे आप ऐसा? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं मौला मुझे ये सब नहीं चाहिए, मौला मुझे आप चाहिए। यहां मैं क्यों आया हूं? मुझे मौला चाहिए। जब मौला मिलेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा खुद ही। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ वी स्टार्ट, करेक्ट गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग क्या है कि मुझे खैमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचना है। उसका स्टेप कहां से शुरू होगा? फर्श अज़ा से शुरू होगा। एक

सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बार बार घड़ी देख रहा हूँ कि मुझे आदत नहीं है शॉर्ट मजलिस पढ़ने की, डेढ़ डेढ़ घंटे से कम थी तो कभी मैंने पढ़ा नहीं है, तभी मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ ताकि सही वक्त पे जो है ख़त्म कर सकें। एक सलवात फिर से पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन इब्ने अली खुद ताहिर भी हैं और खुद दूसरों को पाकीज़ा करने वाले भी हैं। हम यहां आए हैं ताकि अपने आप को पाकीज़ा कर सकें। हुसैन से वसल हो जाए करबला तो करबला बन जाती है। हम करबला जाके कपड़ों को मस करके लाते हैं, काश रूहों को मस करके ले आए। जीजाने गिरामी, हकीकत में हुसैन उस शय का नाम है, एक लम्हे में वजूद को तब्दील कर सकते हैं। दिल मिले तो हुसैन से, जिस्म से बात आगे तो बढ़े, रूह की बात तो आए मैदान में। बस अज़ीज़ाने गिरामी, मैं अपने आप के लिए ये सफर के अंदर जानता हूं कि हुसैन से ज्यादा करीम कोई नहीं है और हुसैन के करम के सहारे मुझे हिदायत चाहिए। कभी कभी होता है शैतान हमें गुमराह करता है जवानों को कि मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो म्यूजिक सुनता हूं, मैं तो फलां करता हूं, मैं तो फलां करता हूं, मैं क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत। अज़ीज़ाने गिरामी, उलमा कहते हैं आप जो यहाँ आए हैं ना, आप नहीं आए हैं, हुसैन ने आपको बुलाया है। अगर हुसैन ने आपको बुलाया है तो शैतान की बात क्यों सुन रहे हैं? हुसैन की दावत थी तो आप आए हैं। याली। बस अज़ीज़ाने गिरामी, हम अपनी आज़ादारी को जो समझते हैं उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करें। हमें ये लगता है कि आज़ादारी यानी गम मनाना और अगली नस्ल तक गम को पहुंचाना, दोनों बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है लेकिन काफ़ी नहीं है, नॉट सफिशिएंट। गम मनाना ज़रूरी है और अगली नस्ल तक गम को पहुंचाना भी जरूरी है, लेकिन उससे एक कदम आगे है कि ये आज़ादारी मकसद है या वसीला है। अगर आज़ादारी करके, तवज्जो कीजिएगा जवानों, अगर आज़ादारी करके मुहर्रम में मजलिस करके 10 दिन मुहर्रम के गम मना के मुझे ये लगने लगे कि मैंने जिम्मेदारी अदा कर दी तो मैंने मुहर्रम ही नहीं समझा। एक्चुअली मुहर्रम उसका नाम है कि मेरी बैटरी वीक हो गई थी, 10 दिन में मैं अपने आप को इतना चार्ज करूं कि पूरा साल हुसैनी बाकी रहूं। यानी 10वें दिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। मुहर्रम और आज़ादारी वसीला है मुझे ज़हूर मेहदी तक पहुंचाने का। सो मुहर्रम पर्पस नहीं है, ये वसीला है। किस चीज के लिए? सो फ्रॉम आशूरा टू ज़हूर, ये लिंक के अंदर मुझे अपने रोल को आइडेंटिफाई करना है कि मुहर्रम से इंस्पिरेशन लेके मैं ज़हूर के लिए अपने रोल को कैसे आइडेंटिफाई करता हूं। सो आई एम मूविंग वन स्टेप अहेड, लेकिन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, शुरुआत वही गम से है, शुरुआत वही आंसू से है, शुरुआत वही। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटेलेक्चुअल बात करने के चक्कर में वो गम, एहसास, इमोशंस उसको भूल जाते हैं, उसकी बहुत अहमियत है। इमाम खुमैनी को कहा जाता था बहुत ज्यादा रोने वाले, जब इमाम हुसैन का नाम आता था रोना शुरू कर देते थे। इतना पढ़ने के बाद क्यों इतना रोते थे इमाम हुसैन? क्योंकि ये समझ में आता है

की बुनियाद यहां से है। अज़ीज़ाने गिरामी, जितनी ताकीद रिवायतों में रोने के ऊपर है, गिरिए के ऊपर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, उतनी दूसरी चीज के ऊपर नहीं है। गिरिया, रोना आज़ादारी। अब गौर करें, आयतुल्ला बहजत खुद एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं रोना क्यों इंपॉर्टेंट। आयतुल्ला बहजत कहते हैं कि लोग कहते हैं कि रोते क्यों हूं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता रोना यानी क्या। अब देखें कौन कह रहा है, आयतुल्ला बहजत कह रहे हैं, आम इंसान नहीं कह रहे हैं। क्लेम उनका क्या है सुनिए, क्लेम आयतुल्ला बहजत कहते हैं कि मेरे नजदीक सबसे अफजल आमाल इमाम हुसैन पर अश्क बहाना है, हत्ता नमाज शब से अफजल। मुझ जैसा एक छोटा तालिब इल्म नहीं कह रहा है, वो कह रहा है जो नमाज का आशिक है, वो कह रहा है जिसकी जिंदगी उबूदियत में गुजरी है। क्यों, खुद एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं दलील देते हैं आयतुल्ला बहजत, कहते हैं कहां से शुरू करते हैं, कहते हैं कि आप देखें हदीस हमारे यहां, रिवायत हमारे यहां क्या है कि कोई नबी नहीं है, लैसन नबी, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये सवाल ना किया हो, ये पूछा ना हो, ये रिक्वेस्ट ना की हो कि मुझे हुसैन का जायर बनना है। कहते हैं ये आम लोग नहीं है, नबी रिक्वेस्ट करता है, उसकी चाहत है कि मैं हुसैन की जियारत करूं। ये आम चीज होती तो नबी नहीं करते रिक्वेस्ट। अब समझे आयतुल्ला बहजत समझाते हैं रोना किसे कहते हैं। देखें इंसान जब रोता है तो इमाम हुसैन को तसव्वुर करता है, गम को तसव्वुर करता है, और अब बात जिस्म से आगे बढ़ जाती है, उसकी रूह पर हुसैन के गम का असर होता है और उसकी रूह हुसैन से मुत्तसिल हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। तो आयतुल्ला बहजत कहते हैं रोना हुसैन इब्ने अली पे एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जहां पर तुम इस मटेरियल दुनिया को भूल के हुसैन इब्ने अली से जाके वसल हो रहे हो, इसे कहते हैं गिरिया हुसैन इब्ने अली पे। इसीलिए ताकीद है इतनी। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ये रोना, ये गिरिया, ये फर्शे अज़ा, ये मजलिस, ये मातम, इसको जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा इससे फायदा उठा पाएंगे, लेकिन शुरू यहीं से है। शहीद मुताहरी एक मिसाल देते हैं, शहीद मुताहरी कहते हैं मिसाल के तौर पर आप तसव्वुर करें कि आप एक समंदर के किनारे खड़े हैं, समंदर के किनारे खड़े हैं और समंदर के किनारे एक हवा चल रही है, समंदर के पानी को लगते हुए आपकी तरफ आ रही है। जब वो हवा आपकी तरफ आ रही है तो ठंडी हवा है, तो ये ठंडी हवा की वजह से समंदर का असर और पॉजिटिव असर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि नहीं समंदर का असर यही है तो उसे समंदर नहीं समझ में आया। कहते हैं करबला भी ऐसी है, कुछ लोग करबला के किनारे खड़े हैं, करबला से गुजरती हुई हवा उन तक लग रही है, करबला का लुत्फ तो ले रहे हैं, लेकिन करबला इस हवा का नाम नहीं है, करबला इस समंदर में डुबकी लगाने का नाम है। आपको गौहर तब मिलेंगे जब आप करबला में खुद को डुबा दोगे। साइड में खड़े रह के नहीं मिलेंगे। शहीद कासिम सुलेमानी का एक जुमला अजीब जुमला है, कहते हैं शहीद कासिम सुलेमानी कहते हैं कि हुसैनियत वो समंदर का नाम है जिस समंदर में हम अलग अलग बूंदे हैं,
जब तक हम बूंदे हैं तब तक बूंद हैं, लेकिन जब समंदर में आ जाते हैं तो हम सिर्फ हुसैनी।

होते हैं। बूंद खत्म होती है तब समंदर बनती है। हमारे वजूद को खत्म करना होगा तो हुसैनी बनोगे, उस समंदर में समाना होगा। बस डेप्थ में जाना होगा करबला की, ताकि हम करबला के वो गहरे मानों को हासिल कर सकें। अज़ीज़ाने गिरामी, दोबारा मैं आयतुल्लाह बेहजत की ही एक्सप्लेनेशन को पेश कर रहा हूँ, वगरना मेरा खुद का होता तो शायद आप एक्सेप्ट भी ना करते। हदीस मासूम की है एक्सप्लेनेशन आयतुल्लाह बेहजत का। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हदीस है मासूम की के जहां पर आयतुल्लाह बेहजत ताकीद करते हैं कि ज़ियारत आशूरा ज्यादा पढ़ा करें, और फिर उसके बाद वो हदीस है, उसको मैं फिलहाल स्किप करता हूं। लेकिन आयतुल्लाह बेहजत कहते हैं कि एक हदीस है जहां मासूम कहते हैं कि अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है वो क्या होगा उसके साथ रोज़े क़यामत। देखें, गौर करें, जा यौमल क़यामा, वो रोज़े क़यामत कैसे आएगा। मुलतखन बिदमे ही फी असहाबिल हुसैन, अल्लाहु अकबर। हदीस है कि जो इमाम हुसैन की ज़ियारत करेगा वो रोज़े क़यामत ऐसे आएगा जैसे उसके जिस्म पे हुसैन का खून, हुसैन के सहाबियों का खून लगा हुआ है। यानी क्या? यानी उसका मर्तबा हुसैन अपने लुत्फ व करम से इतना बुलंद कर देंगे कि वो रोज़े क़यामत ऐसे उठाया जाएगा जैसे वो हुसैन के साथ दुश्मनों से लड़ रहा था और शहीद हो गया। ये करीम है। शर्ते हा व शुरूते हा, हर चीज की शर्त है। लेकिन अजीजाने गिरामी, ये याद रहे कि हुसैन ने गोल आपको ये दे दिया कि तुम अगर एक पाथ पे चलोगे मैं तुम्हें इतना बुलंद कर दूंगा कि तुम रोजे कयामत ऐसे उठाए जाओगे जैसे तुम मेरे साथ लड़ रहे थे। यानी द डोर इज ओपन फॉर यू, दैट इज द पॉइंट। मासूम की हदीस है, आयतुल्लाह बेहजत कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ियारत पढ़ो, लेकिन ज़ियारत ज़बान से पढ़ रहे हो या दिल से पढ़ रहे हो इसमें फर्क है। जब आप पढ़ रहे हो इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम, मैं सिर्फ ज़बान से बोल रहा हूं या मैदाने हर्ब में आना भी चाहता हूं। मैं सिर्फ जबान से कह रहा हूं मौला आपके साथ में और आपकी मोहब्बत में मैं क्या चाहता हूं, सिल्म चाहता हूं, यानी हालत सलामती चाहता हूं आपके लिए, और मैं उनसे जंग की हालत में हूं जो आपसे लड़ना चाहते हैं, हूं जंग की हालत में। अगर मैं जंग की हालत में हूं, मौला कह रहे तुम्हें ऐसे उठाऊंगा जैसे तुमने मेरे साथ जंग की है करबला में। डिपेंड्स क्या गोल रखा है मैंने, Do I want to be one of them? So, वहां से problem नहीं है, the door is open, you can join. अता में कमी नहीं है, receptivity में कमी है। बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, पानी कितना जमा कर सकते हो, जितना जर्फ ले जाओगे उतना पानी लाओगे। अताए हुसैन में कमी नहीं है, मुहर्रम में अपने जर्फ को बड़ा करो ताकि हुसैन हुर बना दे। اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم। बस जानने गिरामी, यहां पर हमें समझ में आया कि मौला खुद ऑप्शंस भी दे रहे हैं। It is open for you. You can come, you can join. Not only join, you will be amongst those who are with me. Allahu Akbar, karam Hussain ka.

इंशाल्लाह वक्त बहुत तेज़ी से चला गया, मुझे कहा गया छोटी मजलिस पढ़ने के लिए क्योंकि लेट हो गया थोड़ा। तो छोटी जो होता है वो रिलेटिव होता है ना, कितना भी छोटा हो सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज की बात मैं यहाँ रोकता हूँ। दूसरा पॉइंट, क्योंकि परचम कोशाई हुई थी, मैं चाह रहा हूँ उस पर थोड़ी गुफ्तगू करूँ बहुत शॉर्ट में, फिर उसके बाद रब्ते मसायब, फिर कल इंशाल्लाह गुफ्तगू कंटिन्यू करूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, हम ये परचम क्यों चढ़ाते हैं, क्यों लगाते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाई डू वी डू दिस? व्हाट इज़ परचम, व्हाट इज़ अलम, इसका सिंबल क्या है? व्हाट इज़ अलमदारी, व्हाट इज़ परचमदारी? अलम लगाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अलम है क्या, पर्पस क्या है अलम का? तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अलम का और अलमदारी का आपके सामने बहुत शॉर्ट में आपके सामने पेश करता हूं, ताकि हमारे लिए क्लियर हो कि परचम क्यों लगाया मैंने। अज़ीज़ाने गिरामी, अलम या लिवा कहते हैं कि हमेशा से जो कौमें होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, उनका एक परचम होता है, एस्पेशली एट द टाइम ऑफ वॉर। हर परचम एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल है। क्लियर है? रसूल अल्लाह के जमाने से इस्लाम का परचम था। पहली जंग में हजरत हमजा थे, फिर कई जंगों में मौला अली थे, फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम तक। अलमदारी एक प्रोसेस का नाम है। अलम क्या होता था? जब जंगें होती थीं, तो जंगों के अंदर उस जमाने में कंट्रोल सिस्टम तो वॉकी टॉकी तो था नहीं, क्या आप बोलेंगे मतलब मूव राइट मूव लेफ्ट, अभी तीर चलाना है, अभी लेफ्ट से हमला करना है, ये सब तो था नहीं, तो होता कैसे था? तो परचम जो होता था वो कमांड और कंट्रोल पॉइंट होता था। परचम बीच में होता था, पूरा लश्कर, पूरे लश्कर की नजर परचम पे होती थी, या दो तीन परचम होते थे। हर परचम सिर्फ परचम नहीं होता था, उसमें दो पैगाम होता था। एक पैगाम ये होता था कि दुश्मन के सामने डटे खड़े हैं। दूसरा पैगाम अपनी आर्मी को होता था कि हम डरेंगे नहीं और परचम झुकेगा नहीं। तीसरी चीज, इसी परचम के जरिए से पूरी आर्मी की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता था, कब लेफ्ट जाना है, कब आगे जाना है, कब पीछे आना है। और जिसका परचम गिर जाता था वो कौमें हार जाती थी। ये अलम यानी निशानी है कि तुम्हारी कौम जिंदा है और जालिमों के मुकाबले में खड़ी है। ये परचम वही परचम है जो करबला से आज तक बाकी और इमाम मेहदी तक जारी रहेगा, और परचम का पैगाम भी वही है कि कल भी यजीदियत के मुकाबले में थे, आज भी यजीदियत के मुकाबले में है, और ता मेहदी जहूर तक हम यजीदियत के मुकाबले में खड़े रहेंगे। या अली, मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दें। है हमारी दरसगा, है हमारी दरसगा इज्जतों का रास्ता, शहादतों का रास्ता। नारा हैदरी। अज़ीज़ाने गिरामी, परचमदारी यानी क्या? वक्त नहीं है, लेकिन इस्लाम ने जब जंग हारी तो इसलिए हारी क्योंकि परचमदार कमजोर थे, और इस्लाम ने जब जंग जीती किस लिए जीती? क्योंकि परचमदार अली जैसा था। कर
کربل آپ دیکھیں جنگ کے اندر اعلان ہوتا ہے ماتا محمد محمد مر گئے محمد مر گئے دوسرے بھاگنے لگے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو کہا اس لیے بھاگ رہے ہیں محمد مر گئے اب لڑے کیوں علی لڑ رہے تھے علی سے کہا کیوں لڑ رہے ہو علی نے کہا اگر

मोहम्मद मर गए तो बचा क्या? आइडियोलॉजी में फर्क देखें, ये वो हैं जो डटे हैं मैदान में, जो मर्द हैं, आज भी परचम उसी के पास है जो मर्द है और हैदर ए कर्रार का मानने वाला है। याली कर्रार यानी आगे बढ़ बढ़ के हमला करने वाला, आज भी दुनिया में हैदर ए कर्रार वाले ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज भी भागने वाले और हैं और लड़ने वाले और हैं। आज अजीजाने गिरामी, आज की दुनिया के अंदर हैदर ए कर्रार वो नाम है जो फासला है हक और बातिल के बीच में। ये आज की दुनिया में आप देख सकते हैं अजीजाने गिरामी। बस यहां पर मौला अली का जुमला सुने, मौला अली मोहम्मद हनफिया को जंग जमल में कहते हैं, ए मोहम्मद हनफिया, परचम देते हैं, कहते हैं मोहम्मद इस परचम को मजबूती से थामे रहो, इस परचम को मजबूती से थामे रहो, अपनी निगाहें दुश्मन के आखिरी सफ पर गाड़े रहो, अपने दांतों को मुंझाए रहो, दबाए रहो, अपने पैरों को जमीन पर साबित कदम रखो और इस बात पे यकीन रखो कि जिसको अल्लाह की नुसरत होती है वो कामयाब होता है। अजीजाने गिरामी, ये जो परचम लगाया है ना, ये अलामत इन्हीं बातों की है। क्या करना है? परचम लगाने के बाद अपने आप को मोहम्मद हनफिया बनाना है। परचम लगाने के बाद मैदान में आना है। परचम लगाने के बाद अपने पैरों को साबित कदम रखना है, दुश्मन की सफों पे निगाहें रखना है। ये है करबला, ये है अलमदारी। जब मैं अलम उठाता हूं तो मैं क्या ऐलान करता हूं? मैं ये ऐलान करता हूं कि इस्लाम की नुमाइंदगी करने में, इस्लाम के लिए कुर्बानी देने में सबसे आगे मैं रहूंगा। ये है अलमदारी, ये है परचमदारी। या अब्बास, ये है अलमदारी। हजरत अब्बास ने सबसे ज्यादा कुर्बानी देने के लिए मादा था, हाथ कट गए उसके बाद भी हजरत अब्बास कहते हैं कि मैं दीन की हिमायत आखिरी लम्हे तक करता रहूंगा। क्या अलम उठाने वाला अब्बास से यही वादा कर रहा है कि मैं भी दीन की हिमायत में अपना आखिरी कतरा खून दूंगा? यह है परचमदारी, यह है अलमदारी। अजीजाने गिरामी, रस्म नहीं है, यह मूवमेंट का नाम है करबला। अपने आप को हुसैन और अब्बास से जोड़ने का नाम है करबला। अजीजाने गिरामी, बस आखिरी चीज, रब्ते मसायब, हम जब जियारत पढ़ते हैं तो जियारत के अंदर हजरत अब्बास की हम कुछ कहते हैं मौला से। क्या कहते हैं मौला अब्बास से? गौर करिए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहते हैं जे तो का यब नामिर मोमिनीन, ए अमीर मोमिनीन के बेटे में आ गया हूं आपके पास। पहले तो हर जवान जो हजरत अब्बास से मोहब्बत करता है, आज हजरत अब्बास को कहे, मौला मैं जिस्म के साथ नहीं अपनी रूह के साथ आपके पास आया हूं, जे तो का मैं आ गया हूं। फिर क्या कहता हूं मैं जियारत में? जबान से पढ़ता हूं या दिल से पढ़ता हूं? क्या कह रहा हूं मैं, गौर करें। वकल्बी मुस्लिम, कल्बी मुस्लिम लकुम ताबे, मेरा दिल सबमिसिव है और ताबे है, आई एम सबमिसिव टू यू। जब मैं ज़ियारत पढ़ रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं। फिर मैं क्या कहता हूं? व नुसरती लकुम मुअद्दा, मैं क्यों आया हूं? व्हाई हैव कम फॉर ज़ियारत, सवाब के लिए। ज़ियारत में तो मैं कुछ और बोल रहा हूं इमाम हजरत अब्बास को।
हजरत अब्बास को मैं ज़ियारत में प्रॉमिस कर रहा हूँ, एलिजियंस पे कर रहा हूँ, उनको वादा कर रहा हूँ। क्या वादा कर रहा हूँ? नुसरती लकुम मुअद्दा, माय नुसरती